मेरे बच्चे, खुदा जानता है कि मेरी नजर में तुम्हारे और मुख्तार के दरमियान कोई फर्क नहीं है। तुम्हारा गम तुम्हारी माँ दुम्मा का गम और तुम्हारे भाई मुख्तार का गम है। मैं तुम्हें ये कहने नहीं आई हूँ कि गम ना खाओ और बेताबी ना करो। बीवी और बच्चे का दाग जानलेवा होता।

0: हम सभी मौत के रास्ते के राही हैं। हजरत इज़राइल किसी का लिहाज नहीं रखते। अपनी माँ की मानो तो मैं कहती हूँ कि इस गम को इतना खुद पर तारी ना कर लो कि ये तुम्हें खाना नशीन करके तुम्हारे दुश्मन की खुशी का बाइस बन जाए।
1: यह काश श्री बानो महल से जाने में जल्दी से काम ना लेती। मैंने उसे बहुत रोका मगर गोया महल के तमाम दरो दीवार उसे बहुत चुभने लगे थे। यहाँ पर शायद मौत उसके इंतजार में थी और उसे महल से खींच कर ले आई। इंसान चाहे कुछ भी कर ले अपनी मौत से नहीं भाग सकता।
2: मैं आपके आंसुओं के साथ आंसू बहाने और यूं अपने आप को सुकून देने के लिए आई हूं। शीरीन और हैदर के दाग ने हम सबको सौगवार कर दिया है। मैं जानती हूं कि आपका दर्द बहुत बड़ा है। शीरीन उस मोती की सी थी जो आपके पास देर से आई और जल्दी चली गई। ये भी इश्क के राह और रस्म है। क्या आप तन्हाई को अपना रफीक बना बैठे हैं? शीरीन महल से इसलिए गई ताकि जो उसे मतलूब था उसे पास।
3: अरे भाई रानी मलका आलिया, अपना बोरिया बिस्तर बांध दो। आज से हम अरब अशराफ की आंखों में धूल झोंकने के लिए जो ईरानी निजात की तहकीर करते हैं कुफे के महल में रहेंगे।
4: क्या मतलब?
3: मतलब ये कि अब से तमाम उमरा वुजरा और कयाम मुख्तार के तमाम सरकर्दा अफराद अपने घर वालों समेत कस्र कुफे में रहेंगे। ये अमीर मुख्तार का हुक्म है।
4: तुम्हें बचपने की सूझी है क्या? तुम्हें वाकई खुशी हो रही है?
3: बहुत खुशी हो रही है मुझे शीरी बानो। मैं तो इतना खुश हूँ कि मेरा दिल चाह रहा है कि चीख चीख के सुनाऊं ताकि मेरी आवाज तमाम अरब के जाहिल कौम परस्तों को पहुंचे। सालों से अरब की जहालत ने हमारी निजात की तहकीर की है। आज हमारी खुशी का दिन है। तुमने क्यों मुंह बना लिया शीनी?
4: कियान, तुम जब भी अरबी और ईरानी निजात की बातें करते हो मुझे बहुत डर लगता है। तुम अली के शिया हो। अली का चाहने वाला कौमी और नस्ली तासुबात की बातें नहीं करता।
3: मैं जानता हूं शीरी, तुम यकीन करो मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा, मगर सालों साल जदों को तोहीन और तहकीर देखने के बायस मैं मजबूर हो गया कि अपनी खुशी का इजहार करूं। मैं बच्चों की तरह खुशी से उछल रहा हूं कि असीरी का वक्त खत्म हो गया है, अब आजादी और सरदारी का वक्त है। उठो, हमें जल्द से जल्द घर से निकल जाना चाहिए।
4: बहुत सी औरतों की आरजू होती है कि उनका महलों जैसा घर हो। शायद तुम्हें यकीन ना है क्यान, मैं अपने इस पुरसुकून घर का महल से तबादला करने पर तैयार नहीं हूं। हमारा महल से क्या वास्ता?
3: देखो शीरी, मसलहत कयाम का तकाजा है। हमें ना चाहते हुए भी कुछ अरसा महल में रहना होगा।
4: कैसी मसलहत क्यान? आप लोगों का ये दावा है कि आपका क्याम मौला अली की खूबू रखता है। मौला अली महल में ठहरे थे क्या?
3: तुम कैसी बातें कर रही हो शीरी, हमें हमेशा हमेशा के लिए महल में थोड़ी रहना है। क्याम के दुश्मनों ने और अहले शर ने क्याम को बर्बाद करने की ठान ली है। इब्राहिम और उसकी फौज के जाने से कूफा क्याम के सिपाहियों से खाली हो गया है। मेरे जासूसों ने इतला दी है कि शिम्र और शबस जैसे खबीसों ने यह मंसूबा बनाया है कि कयाम के सरकर्दा अफराद के घरों पर हमला करके उनके घर वालों को लुकमा बना ले और कयाम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे।
4: मैंने तुमसे इश्क का बंधन जोड़ा है क्यान, अगर तुम मेरी जान भी मांग लोगे तो दरेग नहीं करूंगी। काश मुख्तार दुश्मन की चालबाजियों से निमटने के लिए कोई बेहतर हल ढूंढता। मैं जहन्नुम जाने के लिए राजी हूं मगर कसर नहीं।
3: शीरीन का कातिल हूं, शीरीन का कातिल हूं। कातिल हूं शीरीन का। मैंने अपने हैदर को मार डाला।
1: खुदा की पनाह, बेचारा पागल होता जा रहा है।
5: बकवास मत करो ना रिया, बात करने से पहले मौका महल देख लिया।

0: मैंने कोई गलत बात तो नहीं की? आप खुद तो देख रही हैं, कुछ ज्यादा ही पागल हो गया है।
1: मैं ही शीरी और हैदर की मौत का बायस बना। तुझे उर्मिला को मारने की ऐसी क्या जिद थी बदबख्त, बदबख्त।
2: अपने आप को संभालो ज्ञान, तुमने अपना फर्ज निभाया है। अपने आप को कसूरवार क्यों ठहराते हो?
1: हमने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया था।
2: हम? यानी कौन लोग?
1: यानी वो तमाम लोग जो खून हुसैन के इंतकाम के बहाने तलबगार हुकूमत थे।
0: तो इसका मतलब तमाम शहदा का खून मुख्तार के सर है।
1: मैं मुख्तार को कुछ नहीं कह रहा, मैं फिलहाल सिर्फ अपना गिरेबान नोच रहा हूँ। मेरी आज की ये मुसीबत मेरे अमाल की सजा है, हट जाने की सजा से राते मुस्तकीम से।
2: क्या तुम मुख्तार से जुदा होना चाहते हो?
1: मैं अपने अंदर के शैतान से जुदा होना चाहता हूँ।
2: कयान के इस्तीफे देने की खबर मुख्तार की कमर तोड़ देगी। दुम्मा जान, ये खबर आप ही मुख्तार को सुनाइए, मुझ में तो उसकी हिम्मत नहीं है।
0: मैं तो कहती हूँ कि मुख्तार को बहुत खुश होना चाहिए, उसने ईरानियों से दोस्ती का खमियाजा कुछ कम नहीं भुगता। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं। अगर कियान चला जाए तो अरब के बड़े बुजुर्ग मुख्तार से दोस्ती कर लेंगे।
3: आखिर तुम कब ईरानियों की दुश्मनी से दस्तबरदार होगी नारिया? कियान और मुख्तार बहुत पुराने दोस्त और साथी हैं, जवानी से एक साथ रहे, एक दूसरे के फिराक को नहीं सह सकते।
0: आपने सुन तो लिया दुम्मा जान, वो मुख्तार को कसूरवार ठहरा रहा था। अगर उसे शर्म आइल ना होती तो अपनी बीवी और बच्चों का खून भी मुख्तार के साथ थोप देता।
2: इस्तग़फ़ार करो नारिया, क्या सोगवार है, बीमार है और बुखार में पड़ा है। अगर कोई गलत बात कह भी दे तो उसका कोई कसूर नहीं है।
0: बहुत उसने जन से काम लेती हो।
4: क्या हुआ दुम्मा जान? कियान किस हाल में है?
3: कियान को बहुत भयानक चोट पहुंची है बेटा, उसे ये तवक्को ना रखो कि इतनी जल्दी कमर सीधी कर लेगा।
4: कियान बच्चा नहीं है अम्मा, उसने सारी जिंदगी जहाद किया है, जमाने का हर अच्छा बुरा सह चुका है। जिसने अशुर को दर्द कर लिया हो उसे इन मुसीबतों पर गलबा पा लेना चाहिए।
3: कुछ वक्त लगेगा बेटा, उसे कुछ अरसे इस तन्हाई में रहना होगा ताकि इस मुसीबत का दाग उसके लिए आसान हो जाए।
0: मुख्तार, तुम्हारा दोस्त कियान इस्तीफा दे चुका है, वो अब तुम्हारा साथ नहीं देना चाहता।
4: वो क्यों?
0: जाहिर सी बात है, कियान बीवी बच्चे का दाग उठाए और मुख्तार को ही गम ना सहे।
4: ये किस तरह का फैसला है औरत?
0: हकीकत कड़वी ही होती है मुख्तार, आखिर कियान का तुम्हें पीठ दिखाकर इस्तीफा देने की क्या वजह है? मुख्तार ने उसकी बीवी और बच्चे को मारा है या हुरमला ने? अगर उसकी डाड़ी में कोई चोरों वाला टिंका ना होता तो वो हुरमला के खून का मजीद प्यासा हो जाता, ना के पीछे हट जाता।
4: बकवास बंद कर औरत, तुम्हारी जबान के बिच्छू ने हमेशा बेचारे कियान को डंक मारा है। आखिर तुम कब तक इस अंधी और जाहिलाना दुश्मनी को आगे बढ़ाना चाहती हो? अगर मैं ये कहूँ कि कियान का आज पीछे हटना तुम्हारे साधों से कीनातोजी की वजह से तो गलत ना होगा। आखिर कियान को मुख्तार के रकाब में क्यों रहना चाहिए जबकि उसे मुसलसल मुख्तार के घर वालों से तहकीर और तौहीन का सामना करना पड़ता है।
0: मुख्तार, मैं पुलिस सिरात पे तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, सुन रही हो अमरा? जब से बादशाहत मिली है इसकी आवाज ऊंची हो गई है। मुझे शक है तुम्हारे दिल में बाल बच्चों और अपनों की जरा सी भी मोहब्बत होने में। तुम्हारा बाप और भाई ईरानियों के हाथियों के पांव तले दबके मर गए और तुमने ना जाने कैसे अपना दिल ईरानियों को निकाल कर दे दिया है। तुमने वैसे भी ईरानियों के लिए बहुत कुछ किया है, जरा अपना तख्त ताज भी कियान को निकाल के दे दो ताकि तुम्हें नजर आए कि वो कैसे खुशी के मारे अपने बाल बच्चों का गम भूल जाएगा।
4: अगर मुझे खुदा का खौफ न होता तो इस औरत को तलाक दे देता।
3: बेटा, अपने सब्र का सवाब जाया मत करो, मुख्तार तुम्हारी तरह के मर्दों को हामिले सब्रे अय्यूब होना चाहिए।
4: तुम कुछ बताओ हमारा, उम्मीद नहीं जाते कियान है कोई?
2: मुख्तार, कियान तुम्हारी रकाबत में मगलूब हो गया है।
4: रकाबत वो भी मुझसे?
2: हाँ, रकाबत वो भी तुमसे। उसने खतरनाक तरीन और मुश्किल तरीन कामों को अपने जिम्मे लेकर अपने आप को कैम का सबसे ज्यादा ताकतवर शख्स कहलवाना चाहा था।

0: जब वो हुरमुला से लड़ने में शिकस्त खाता है और अपनी बीवी और बच्चे को भी गंवा देता है तो अपने आप को खो बैठता है। उसने तुम पर तुम लोगों के क्याम के अहदाफ पर शक किया है। उसका मानना यह है कि मुख्तार ने क्याम की राह में असल रास्ता खो दिया है।
1: ये कयास तो बिल्कुल बेतुका है उमरा। अगर क्यान लड़ने की राह से मुनहरिफ हो गया है और अपनी खातिर तलवार नहीं चला रहा तो इसमें मुख्तार का क्या कसूर है?
0: तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। ये जान लो कि क्यान का दर्द क्याम की हुकूमत का दर्द है जिसे जल्द से जल्द ठीक हो जाना चाहिए।

0: तुम भी खुश रहो आधी राह के साथी। मुख्तार और क्यान हूं या न हूं, अली का रास्ता और मजहब जिंदा रहेगा। आखिर कब तक सियापोश होकर ताजियत में रहना और हमसे दूर रहना चाहते हो?
1: मुझे नहीं मालूम मुख्तार, मैं न तो शीरीन के लिए अच्छा शौहर बन सका और न हैदर के लिए अच्छा बाप। मेरी सारी जिंदगी सिर्फ सफर और खतरों से भरी हुई थी। काश एक बार शीरीन अपना शिकवा बयान तो करती, वो मेरी जबरदस्तियों पर राजी रहती थी और कुछ भी न कहती थी। मैं इस बात पे कुड़ रहा हूं कि शीरीन और हैदर को बेबसी में मारा गया, यहां तक कि किसी ने उनकी चीख भी नहीं सुनी। काश शर्मला मुझे मार डालता, मुझे उसका बदला चुकाना हो। मेरी बीवी और बच्चे का कत्ल मेरे सर है जो कि इंतकाम की प्यास में उछल रहा था।
0: रास्ते की हकानियत पर शक वहां तक सही है जब तक ये कुफर तक न ले जाए। क्या तुम्हारे घर वाले मौला हुसैन के घर वालों से ज्यादा बेकस थे? जो जुल्म तुम पर हुआ वो हमारे मौला हुसैन पर होने वाले जुल्म के सामने सूरज को चराग दिखाने के बराबर है। जो भी इस राह में जितना ज्यादा मुकर्रब होगा वह ज्यादा मुसीबतें उठाएगा। खुदा की कसम, अगर सालों जो हम साथ मिलकर जुल्म जोर से लड़े हैं, अगर एक बार भी मुझे तुमसे रश्क हुआ है तो वो यही होगा कि तुमने बीवी और बच्चे का दाग देखा और मुख्तार ने नहीं देखा। तुम इस वक्त हम सबसे ज्यादा मौला हुसैन से नजदीक हो। तुम्हारा दिल कैसे मानता है कि रास्ता मुड़ के चले जाओ जालिम।

0: तुम रो रही हो मरा?
1: नहीं, मैं तो नहीं रोई।
0: तो बानू की आंखों पर घूमने वाले मोती प्यार की वजह से हैं?
1: मजा नहीं आया।
0: कभी कभार मजा नहाने में ही मजा होता है। कहीं महल को छोड़ना तुम्हारे लिए दुश्वार तो नहीं?
1: मैंने इन पत्थरों के महल में उम्र गुजारी है। अगर इन सुतूनों से मुझे मोहब्बत हो गई होती तो मैं मुख्तार की बीवी ना बनती।
0: जवाब दंदान शिकन है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि बानू किस बात पर गमजदा है?
1: मुझे याद आ रहा है, सर भी याद आ रहा है मुझे। उसके साथ महल में आई थी, उसके बगैर जा रही। खुदा उसकी मगफिरत फरमाए। अगर वो होता तो अभी दरवाजे पे खड़ा होता और चिल्ला रहा होता, जल्दी कीजिए बीबी जी, जल्दी कीजिए, मैंने ऊंट पर कलजावा रख दिया है। बेचारा बेजबान जानवर तकलीफ में है।

0: तकलीफ में है वो।
1: खुदा उसकी मगफिरत करे। जर भी नौकर नहीं था, गुहारे नायाब था। मेरे लिए तो वो एक माँ से ज्यादा चाहने वाली दाया की तरह था।
0: मेरे लिए लफका का मतलब है बदोश करने वाली खुशबू, लहरों की शरशर की आवाजें, मुर्गे की सुप की अजान, खेतों में तेज हवा की आवाज और सरबी, वो भाई जो दरख्त के साए की तरह मेरे लिए एक हक न जताने वाला शख्स था, जिसके साए तले में लफका की गर्म हवाओं से महफूज रहती थी और उसे बार बार तंग करती थी। एक दफा भी उसने बदतमीजी से जवाब नहीं दिया। लफका का इलाका जंगल की भेड़ों और कुत्तों की खौफनाक आवाजों के साथ सरबी के बगैर बहुत डरावना होगा।
2: आप मोहतरम ख्वातीन उन घरों की चश्मो चराग हैं, जिनकी एक एक ईंट आपके मर्दों की पेशानी के पसीने के मरून मिन्नत। जिन जवानों ने अपने काम काज छोड़ दिए हैं, तलवारें हाथों में ले ली हैं, ताकि अपने शर्फ, दीन और नामूस का दिफा करें। जो रौब और वहशत कूफे के अशरार ने दिलों में डाल दिया था, उसने हमें मजबूर कर दिया कि कुछ अरसे इस बड़े महल के मेहमान हो जाएं। जानता हूं कि आप में से अक्सरियत को ये पसंद न था और महल में रहना आपके लिए निहायत दुश्वार था। मरहूमा शीरी बानो भी इस बात का एक बड़ा नमूना थी, जो महल में रहने को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मगर दिल पर जबर करके मजबूरन यहां पर ठहरी रही। काश वो चंद रोज और सब्र कर लेती और हमें अपना सोगवार न बनाती।
0: तुमने कब से आईना नहीं देखा?
1: क्यों?
0: तुम्हारे सर और दाढ़ी के बाल तुम्हारे दांतों के रंग के होते जा रहे हैं।
1: तुम्हारे ख्याल से ये कैसी निशानी है?
0: इस बात की अलामत है कि तुमने इक्तदार के सरकश घोड़े को लगाम दे रखी है। तुम इक्तदार पर सवार हो, इक्तदार तुम पर सवार नहीं। बड़े लोग बड़े बोझ के तले कमर नहीं झुका लिया करते, बाल सफेद कर लेते हैं। तुम्हें अदल इंसाफ का कम है मुख्तार, लिहाजा अपने आप पर जुल्म मत करो, थोड़ा बहुत अपनी फिक्र भी क्या करो।
1: अदल से हुकूमत करना, तेज तलवार पर अपनी गर्दन रख देने के बराबर है। एक लम्हे की भी गफलत कर ली तो शहर कट जाएगी। मैं जिस कदर हुकूमत के मामलात में आगे बढ़ता जा रहा हूं, उतना ही मेरे मौला अली की मजलूमियत मुझे समझ में आती जा रही है। मौला अली की तकलीफों का इदराक जानलेवा है उमर। उसका सबसे छोटा असर बालों का सफेद होना है।
2: अब जबकि खुदा के लुत्फ व करम से लईनों का शर खत्म और खतरा तमाम और अमन नियत बरकरार हो गई है, बेहतर है कि आप भी अपने सादा और हसीन घरों को लौट जाएं। अपने हुजरों की गर्द गुबार और मकड़ी के जाले खत्म कीजिए। आपकी मुर्गियां, बतखें और बगीचे आपके दाने पानी के मुंतजिर हैं। जाइए और अपने घरों में इश्क की आबो हवा को दोबारा कायम कीजिए। अमीर मुख्तार बजादे खुद आप लोगों के महल से जाने के बारे में इजाजत देने आना चाहते थे, मगर मैंने पेश कलामी की और उनके दिल की बात आपके हुजूर में अर्ज कर दी। खुदा जानता है कि मुख्तार, मैं और आपके शोहरों में से किसी एक ने भी कयाम से विरासत पाने की नीयत से तलवार नहीं चलाई। अगर मजबूरी न हो तो महल में रहना हमारे लिए गैर पसंदीदा बात है और कयाम की ख्वाहान अदल हुकूमत को बदनाम भी करता है। फी अमानिल्लाह।
1: मरहबा अब्दुल रहमान, हम शुक्रगुजार हैं कि तुमने हमारे बदले जहमत की और हमारे बोझ को हल्का कर दिया। جو جھوٹے افراد ہمیں کذاب، ہمارے قیام کو بے معنی اور ہمارے

0: ये कुछ ज्यादा नहीं, ये तकरीबन उस रकम की दुगनी है जो जुबैर के बेटे ने नए गवर्नर को दी है।
1: चारा कोई नहीं, मुझे उम्मीद है कि इस रकम को देखने से गवर्नर साहब लालच में पड़ जाएंगे और कूफा के अलावा किसी और जगह इमारत के लिए चले जाएंगे।
0: कबूल ना करे तो?
1: कबूल ना करे तो तुम्हें दूसरी जबान में बात करनी होगी।

0: किसी ने ये मुख्तार का कासिद हो?
1: दो ऊंट और एक सवार, वईद है कि वो मुख्तार की जानिब से हो।
0: क्यों वईद है अमीर?
1: अगर मुख्तार सरकशी करना चाहे और खुदे को हमारे हवाले ना करे तो उसके लिए वो एक ही कासिद।

अगर वो खलीफा की इताअत करना चाहे और अपनी जबान पर कायम रहे तो उसे एक बड़ा काफिला शान के साथ और दबदबे के साथ हमारे इस्तकबाल के लिए भेजना चाहिए था। ये कारमा तो किसी से भी शबाद नहीं रखता।

0: मुतानतन
1: मुख्तार का सिपाही
0: तो तुम्हारा कत्ल वाजिब है।
1: क्यों?
0: क्योंकि तुम मुख्तार के आदमी हो।
1: मुख्तार का आदमी होना जुर्म है क्या?
0: मुख्तार और उसकी पूरी हुकूमत अजमों की हिमायत की वजह से मुजरिम है। ऊंटों पर क्या लदा हुआ है?
1: तिला।
0: तिला?
1: हाँ, 70,000 दीनार हैं।
0: यकीनन उन अजमों के हकूक होंगे जो मुख्तार और उसकी हुकूमत के नाम पर उछलते हैं।
1: जी नहीं, कीमत है नए गवर्नर कूफा की।
2: मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जरूर कोई गड़बड़ है।
3: आप कहें तो इन डाकुओं को मार भगाएं।
2: इससे क्या होगा?
3: एक तेवर दिखाएंगे तो कूफे वाले आपको बासानी कबूल कर लेंगे।
2: चंद डाकुओं को भगा देने से तो कूफे वाले हमारे कुदरत के रोब में नहीं आ जाएंगे, खास तौर पर कूफे वाले जिनकी तलवारें उनके दिमाग से ज्यादा चलती हैं।
0: इस बड़े खजाने की बरकत से इसकी जान बख्श देते हैं और घोड़े और ऊंटों को ले जाएंगे।
1: तुम्हें बहुत खुजली है।
0: इस खजाने से नाजुक बदन कनीजे खरीदेंगे ताकि वो हमें खुजाएं।
1: तो तुम्हारा सर तुम्हारे बदन पर बेचैन हो रहा है।
0: अच्छा मजा कर लेते हो तुम चिलगोजे।
1: शायद मुझे अपनी मिर्चों वाली तेजी तुम लोगों को दिखानी पड़ेगी। अगर इन ऊंटों को तुम लोगों ने हाथ भी लगाया तो अपने कत्ल के खुद जिम्मेदार होगे।
0: इसे चबाओ, हम भी देखते हैं कितना तेज है।

0: क्या अजूबा है ये शख्स, गजब का लड़ाकू है।
1: ये गजब का मौका हमारी नजरों के सामने कोई हिकमत जरूर रखता है।
0: कैसी हिकमत अमीर?
1: मुझे नहीं लगता कि मुख्तार को फिको मारे हवाले करना चाहता है।

0: ये रकम उससे दुगनी है, मगर मैं पागल ही हूंगा जो कुफे की हुकूमत की कुर्सी को 70,000 दीनार के बदले बेच डालूं।
1: मर्जी है आपकी, चाहे तो ना बेचे।
0: अगर ना बेचूं तो क्या करोगे?
1: मैं तो एक मजबूर सिपाही हूं, अगर ना बेचेंगे तो आपको मुख्तार से लड़ना होगा। अगर चाहे तो इसकी फौज की एक झलक देख सकते हैं। वो सब ऐसे जमजू हैं कि मुझ जैसे लोग उनके मुकाबले में है ही चाहे।
0: मैंने कहा था ना कि इस मार्के के पीछे कोई हिकमत छुपी हुई है।

0: की तरह आए हो या गीदड़ की मानिंद? हार के आए हो
1: तो क्या मैं गीदड़ों की तरह नाकाम हो जाता? जाहिर है कि मैं कामयाब हो गया हूं। मर्द मुकाबल पहले तो नहीं मान रहा था, मंसूबे के मुताबिक जब लश्कर के परचम उसे दिखाए तो उसके चिरे का रंग उड़ गया।
0: यह हमारी तरकश का आखिरी तीर था। जुबैर के बेटे को अगर हमारी चाल का पता चल जाए तो हमारे मक्के से मरासिम खराब हो जाएंगे।
1: बिलाखिर उसे खबर तो जरूर पहुंचेगी।
0: मुझे उम्मीद है कि इब्ने जुबैर को खबर मिलने से पहले इब्राहिम इब्ने ज़ियाद का काम तमाम कर चुका होगा।
1: मेरे ख्याल से अगर तुम इन 70,000 दीनार को इब्राहिम के लश्कर पर खर्च कर देते तो जल्दी मकसद तक पहुंच जाते।
0: इब्राहिम को दीनार नहीं चाहिए, ज़ायदा उसे वक्त चाहिए।

0: अमीर, शाम का लश्कर नसीबैन तक पहुंच गया है और हमसे एक मंजिल के फासले पर पड़ाव डाल चुका है। वो तकरीबन 20,000 अफराद हैं।
1: मरजाना के बेटे की
0: सुना है कि मजूसियों और बेदीनों से जहाद करने की नीयत से गुस्ले जहाद भी किया है उसने।
1: जाओ जाओ और खबर रसाना को इत्तला दे दो कि इब्ने मरजाना की खबरें मुझे एक एक बारीकी के साथ फौरन चाहिए, हत्ता के उसके खांसने की खबर भी।
0: जी अमीर।
1: सुना तुमने इब्ने लुगैत, इस मलून ने मुस्ताबात को शामियों को धोखा देने का जरिया बना रखा।
2: आखिर ये अबू सुफयान के तरफदारों की ज़ाती खसलत है। स्पेन में भी इन्हीं हीलियों के जरिए मौला अली के लश्कर को फरेब दिया इन्होंने।
1: ये खतरनाक जाल है।
2: शियों ने जालों में फंस फंस के इन्हें तोड़ना सीख लिया है।
1: जहालत के गैर मरी जख्मों से खुदा की पनाह।
3: अश्तर और उसका खानदान इराक के सबसे ज्यादा नामी गिरामी लोगों में से है। इराकियों की नजर में मालिक अश्तर हमेशा से बादशाह था और उसका बेटा शहजादा था। मुझे तो हैरत है कि उसने मुख्तार की बैत कैसे कबूल कर ली।
2: मैंने सुना है उससे ना चाहते हुए मुख्तार की बैत कबूल की है।
3: मैंने भी सुना है कि अश्तर का बेटा शियों का बड़ा और अमीर होना चाहता था। मुख्तार ने किस चाल से उसे ठंडा किया है ये तो खुदा ही जानता।
2: कोई मंसूबा है आपकी नजर?
3: हमें चारों जानिब से अश्तर के बेटे पर हमला करना होगा। एक तरफ से उसकी अरबी गैरत को छेड़े कि वो अजमों के साथ क्यों मिला हुआ है, और दूसरी जानिब उसकी खानदानी रग को। अगर इराक पर शियों को हाकिम होना चाहिए तो अश्तर का बेटा और उसका कबीला उसका ज्यादा हकदार है कि अजम लोग या सकफी कबीला हुकूमत करे। तीसरी जानिब अश्तर के बेटे की उर्दूगाह है जो एहतमाली मुखालफतों के लिए तैयार है। है कुछ ऐसे बागी जो शामियों की माल गनीमत की नीयत से मैदान में आए हैं। मुझे इत्तला मिली है कि पिछले जंग में उन्हें ज्यादा माल गनीमत नहीं मिल सका। चौथी जानिब से वही आम अंदाज से जंग करना है, लड़ो ताकि लड़ें।
2: जब सभी कुछ सोचा हुआ है आपने तो फिर परेशान क्यों है?
3: इब्ने नुमैर, उस जंग से डरो जिसमें तुम ये समझते हो कि जीत जाओगे।
1: क्या हुआ?
2: मेरे ख्याल से इब्ने हूद है जिसकी आदत है हमेशा मुखालफत करने की, रोजाना किसी बहाने से शर फैलाता है।
1: तुम लोगों ने अब तक मुझे क्यों नहीं बताया?
2: मैं शर्मिंदा हूँ अमीर, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। हमें लगता था कि उसकी अक्ल ठिकाने लग जाएगी।
1: हमारे

तेरे मुराद हमारे आंसुओं की कमा हम अपने शहीद इमाम के खून का बदला लेने के लिए उठे।

की 45वीं आयत, चैप्टर 2 वर्स नंबर 45, वहां पर ऐलान रब्बुल इज्जत का कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। ऐ लोगो, ये बनी इसराइल के लिए आयत है, ऐ लोगो तुम खुद अपनी मदद करो, सब्र के दामन को पकड़ो। सब्र का दूसरा मतलब है रोज़ा, सब्र का दूसरा मतलब है रोज़ा।

मेरे हबीब कह दीजिए इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरुना मिन्हु, अरे जिस मौत से तुम फरार इख्तियार करते हो, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरुना मिन्हु फइन्नहु मुलाकिकुम, वो मौत आकर सामने से तुम्हारी मुलाकात करेगी। भागने की जरूरत नहीं है, वो खुद मौत आकर मुलाकात करेगी। थुम्मा तुरद्दुना इला आलिमिल गैब वश्शहादा, और उसके बाद तुम्हें गैब का जानने वाला की बारगाह में पेश किया जाएगा और वहां तुम्हें यह बताया जाएगा कि तुम कौन कौन से काम करके आए हो। ये मुलाकात कैसे करेगी? कोई अपॉइंटमेंट लेगी डॉक्टर की तरह कि फलां दिन फलां टाइम पे आना। ये मौत जब मुलाकात करेगी तो हमसे पूछेगी कि मैं आ रही हूं। मलिकुल मौत हमसे पूछेगा? नहीं पूछेगा ना। जवाब देखिए, सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम, कहा फरजंद रसूल ये मौत मुलाकात कैसे करेगी? खुदा ने कहा फवा मुलाकिकुम, वो आकर तुम्हारी मुलाकात करेगी। मौला ने कहा बहुत सादा सा जवाब है, तैदुस्सनीन थुम्मा तैदुश्शुहूर थुम्मा तैदुल्लय्याम थुम्मा तैदुस्साआत थुम्मा तैदुन्नफस, ये मौत ऐसे मुलाकात करेगी। सालों की गिनती कर, महीनों की गिनती कर, दिनों की गिनती कर, घड़ियों की गिनती कर, उसके बाद एक मोड़ आएगा, ये सांस जो ले रहा है उसकी गिनती आके खत्म हो जाएगी, मौत की मुलाकात हो गई। साल गुजरते जाएंगे, महीने गुजरते जाएंगे, दिन गुजरते जाएंगे, घड़ियां गुजरते जाएगी, सांस कमी और खत्म हो जाएगी। थुम्मा तईदुन नफस, बंदा अपनी नफस को गिनेगा कि अब आखिरी नफस है, बंदे की मौत से मुलाकात हो जाएगी। ऐ खुदा के बंदे, तू कैसे मौत को भूल सकता है? उसी में तेरा फायदा है। हमारे यहाँ ये माना जाता है, ये है ना, हम भारत में हैं, मुझे बहुत पसंद है ये हमारे इंडिया का जुमला, वो क्या है, शुभ शुभ बोलो, क्या शुभ शुभ बोलो, सारी सारी बात करो ना। कहीं बैठे होंगे तलाक की बात करेंगे तो कहेंगे सारी बात करो ना, शुभ शुभ बोलो। मरने की बात करोगे तो वो कहीं से आवाज आएगी, शुभ शुभ बोलो ना। पता नहीं नुकसान की बात कहीं करेंगे तो शुभ शुभ बोलो ना। एक्सीडेंट की बात करेंगे तो शुभ शुभ बोलो ना। और उसमें अगर बीमारियां आ जाए, कैंसर की बात करो, पता नहीं और कौन सी बीमारी होती है, तो कैंसर से हमको, हम सबको डर बहुत लगता है ना, हाँ कैंसर डायबिटीज, शुभ शुभ बोलो ना, अच्छा बोलो। इसलिए हमें ये हो गया है कि मौत की बात करेंगे ना तो जल्दी मर जाएंगे, मौत की बात सुनेंगे तो जल्दी मर जाएंगे। अरे खुदा के बंदे, मौत तेरे साथ साथ चलती है तेरे साये की तरह। तुझे शायद पता नहीं कि हर रोज तू मरता है और हर रोज जिंदा होता है। कुरान ने यह कहा है अपनी मौत को याद कर, और जब मौत को याद करेगा तो नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम हमें कहा है, लोगों मौत को याद करना है, ज़ुरुल कुबूर कब्रस्तान जाओ, कब्रों की ज़ियारत करो, युज़क्किरुकुमुल आखिरा, वहां जाया करो, तुम्हें तुम्हारी आखिरत याद आ जाएगी। और फरमान नबी अलैहि सलाम ने कहा ऐ मुसलमानों, ये मौत को याद कर रहा है, अक्सर मिन ज़िक्र मौत, मौत को कसरत के साथ याद करो, फ़इन्नहू क्या है, तुमहसु दुनूब, वो तुम्हारे गुनाहों को धो डालता है। मौत को याद करना, गुनाहों का धोबी कौन है मासूम की नजर में? मौत को याद करना और रखना, बंदा मौत को याद कर, मौत को याद रख, तो तुझे गुनाह करने की हिम्मत नहीं होगी। कब आके मौत आ जाएगी? एक और हदीस पढ़ लूं, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम ने कहा इन हाज़िल क़ुलूबु लतस्दा, ऐ मुसलमानों ये दिल जो है ना उस पर जंग लग जाता है, काट गुजराती में काट चढ़ी जाए, इंग्लिश में क्या कहते होंगे, रोस्ट रस्ट, रस्ट।

मुसलमानों ये जिद्दील है ना, उस पे जंग पकड़ लेता है, जंग चढ़ जाता है। तो पूछने वाला ने पूछा, या रसूलल्लाह वमा जिलाउहा, इस दिलों पे जो रस्ट, जंग, काट जो चढ़ जाता है, वो जंग को निकाले कैसे, कौन सी दुकान में? एंटी रस्ट बोलते हो आप, रंग मिलते होंगे या ना गाड़ियों के, एंटी रस्ट के लोहा जो है इसमें जंग ना चढ़ जाए, तो वो रंग कौन सा है एंटी रस्ट? फमा जिलाउहा। नबी का जवाब, ज़िक्रुल मौत व तिलावतुल कुरान, मौत को याद करो, इन दिलों का जो काट है, जंग है, रस है, वो उतर जाएगा। लेकिन मौत से हमें इतना डर लगता है कि मौत की बातें सुननी नहीं, मौत की बातें हमें सुननी ही नहीं। खुदा के बंदे, खुदा ने मौत के लिए तेरी जिंदगी के लिए क्या नहीं कहा? आया कुरान मजीद की तरफ, सूरह ज़ुमर, कुरान मजीद का 39वां सूरा, आयत का निशान है 42, चैप्टर 39, गौर से सुनिएगा, वर्स नंबर 42। ऐलान रब्बुल इज्जत हुआ, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु यतवफ्फल अनफुसा हीन मौतिहा, अल्लाहु यतवफ्फल अनफुसा हीन मौतिहा, जब नफ्स को मौत आ जाती है, वो आयत सुनी थी ना आपने, कुल्लो नफ्सिन दायकतुल मौत, जब मौत को, जब नफ्स को मौत का मजा चख लेता है तो क्या होता है? अल्लाहु यतवफ्फल अनफुसा हीन मौतिहा, जब नफ्सों को मौत आती है तो उन नफ्सों की रूहों को अल्लाह के पास आती है। कब? जब वो लोग मरते हैं। इतना ही है? नहीं, खुदा ने कहा अल्लाहु यतवफ्फल अनफुसा हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और उन नफ्सों की रूह भी अल्लाह के पास जाती है और आती है कि जो हजरात नींद में होते हैं लेकिन मरे हुए नहीं। पता क्या चला? ऐ मुसलमान, तेरे हर नींद के पीछे तेरी मौत होती है। अरे नींद के पीछे नहीं, तेरी नींद के साथ तेरी मौत होती है। क्यों? जब बंदा मरता है तो रूह खुदा के पास, बंदा सोता है तो रूह खुदा के पास, लेकिन फर्क इतना ही है। अल्लाहु यतवफ्फल अनफुसा हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और जो सोते वक्त मरे नहीं उसकी रूह भी अल्लाह के पास। फयुम्सिकु अल्लती क़ज़ा अलैहिल मौत, वो जो सोए हैं ना, सोने वाले लोग हैं ना, जिसकी मौत आ गई होती है ना, क्योंकि रूह उसके पास गई थी, फयुम्सिक, रोक लेता है, तेरी मौत आ गई, ये रूह वापस नहीं जाएगी। अरे खुदाया नींद में से उठने तो दे, कहा नहीं, तेरी मौत का वक्त आ गया, हमने रूह को रोक लिया। फयुम्सिकु अल्लती क़ज़ा अलैहिल मौत, जिस रूह पे कजा व कदर का हतमी मरतबा आ गया था उसको खुदा ने कहा फयुम्सिक, और उसके बाद जिसकी मौत अभी नहीं आई, वयुर्सिलुल उखरा इला अजलिन मुसम्मा, और जिसकी मौत अभी नहीं आई उसकी रूह को वापस भेजता है जब तक कि उसका वक्त आ जाए। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफक्करून, इस मामले में खुदा की वो निशानी है उस कौम के लिए कि जो सोचने वाली कौम है, फिक्र करने वाली कौम है। ऐ मुसलमान, डगले या पगले, कदम कदम पर, ये सलीम भाई जब आते हैं तब मैं समझ जाता हूं कि अब उतरो मौलाना, सल्लु अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। सलीम भाई का हुक्म आ गया कि अब गाड़ी को करबला की तरफ ले जाओ, एक सलात पढ़िए मुहम्मद वाले मुहम्मद पर। ऐ मुसलमान, इस दिन का हुक्म है अपनी मौत को याद करो और याद रख, उसमें तेरा ही फायदा है, और मौत को याद करने से कोई मौत जल्दी नहीं आ जाएगी। मौत को याद रखने से और करने से तू गुनाहों से दूर होगा और

मासूमीन पे वहां लिखी है, वहां पे बयान की है. So he said, let's go and get apology. You know, हमें जरा माफी दिलवा दो. एक गस्बी खजूर खा लिया. जिसने एक खाया वो खारजी, जो पूरा बाग खा गया. इतना खुल के पढ़ूं या माइल्ड कर दूं? वो कह रहे हैं मजमा आप ही का है. शुक्रिया मोहब्बत का. मैं वाकई आई रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई थैंक यू ऑल. मुझे

Religious. Why aren't you speaking? Was Shaitan not religious? He was very religious. He was so religious that the angel said, "Oh Allah, this jinn is doing so much about that. Can we bring him to Arsh?" Allah said, "If you want." Because Allah knew what was in his heart. Allah knows the secrets of the hearts. Angels were only looking at the apparent. Many Muslims only look at the apparent. Someone was standing in the front line with the Holy Prophet. You see, Iblis was hidden until a test, a trial came. The sixth Imam in Usul al-Kafi says that whenever he passed by Hazrat Adam alayhi salam in Jannah, Iblis would kick Hazrat Adam alayhi salam. Jealous from day one. Many people are hidden until Allah subhanahu wa ta'ala said to all the angels, the highest population is of the angels. وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ When I blow the spirit into him, then all of you do sajda to him. But then Allah said, but one of you will not do sajda to him. And he is the one upon whom I will send my curse till the day of judgment. All the angels started crying. And they all one by one went to Shaitan and said, pray for us that the cursed one is not me. The Imam said, Iblis raises his hand, "Oh Allah, may your curse not be upon him. May your curse not be upon him. Upon, oh Allah, do not curse him. Do not curse." But not once he prayed for himself. So arrogant. Pata nahi log aaj majma hai abhi tak mere saath. Meri baatein pahunch rahi hain. Main Urdu pe aa jaun agar kahen to. Qurbatan lillah. Maula farmate hain kya kiya shaitan ne Azazil. Nachwa laga mein maula farmate hain uska naam tha Azazil. Phir maula farmate hain 6000 saal ibadat thi. Kitni? Allah kabhi ek sajde pe kisi ki 6000 saal ki ibadat ko rad nahi karta. Allah adil hai. Lekin Allah ne uski ibadat ko rad isliye kiya kyunki uski ibadat qabool hi nahi ho rahi thi. Nahi hai majma. Innama yataqabbal Allahu min al-muttaqin. Allah jiske dil mein taqwa ho uski ibadat qabool karta hai. Nifaq wale ki nahi. Iblis noor ke member pe baith ke dars deta tha. Ek din haath se tasbih chhoot gayi. One day he accidentally dropped the tasbih. 70,000 angels ran. Before the tasbih hits the ground, let us grab it. Usko enjoyment shuru ho gayi. Har roz tasbih phek deta tha. Riyakar. Ye lambi daadiyon se dhoke na khaiyega. Main kisi pe hit nahi kar raha hu. कई लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा मजहबी जो जरूरत से ज्यादा मजहबी बने ना उसको कहीं परवरदिगार से बचा के रखे हुँ? हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़े सुन्नी आलिम ने एक जुमला कहा मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने कहा कि जो ज्यादा मजहबी हो जाए ना उससे डरो ये आजकल इसको तकवा हो गया पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं कुछ को लकवा हो जाता कुछ को तकवा हो जाता है तकवा अपनाने वाली चीज है ज्यादा मजहबी हो जाएगा मां की तौहीन करेगा बाप की तौहीन करेगा तो मैं नहीं पता मैं मजहबी हूं मैं नमाज आगे पढ़ता हूं तो तू एहसान किस पे कर रहा है अगर इल्म और तकवा आए और मां बाप का एहतराम साथ में आए तो ये सच्चा इल्म तकवा है पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं लेकिन जिस मजहबी आदमी से मां बाप डरने लगे हैं ये तकवा नहीं है पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं जो जवान मां बाप से डरे वो मुत्तकी है जिससे मां बाप डरे वो मुत्तकी नहीं है मेरी बातें बुरी तो नहीं लग रही हैं ये मैं पढ़ूं या आप लोग मुझे देखें मौला हुसैन ने क्या किया जहालत और जलालत से निकाला जलालत यानी गुमराही जहालत इग्नोरेंस बहुत से लोग बहुत ज्यादा मजहबी बन रहे हैं खवारिज नवासिब कितने मैं क्या किस किस का नाम लूं किन किन के नाम ना लूं और प्रोक्लेमेशन क्या है हम लोग मजहबी हैं
میں مذہبی آدمی آپ کو بتا رہا ہوں علی کافر ہے.

आप क्यों नहीं मान रहे? अली कुछ नहीं कर सकते, अली अपनी मदद नहीं कर सके, शहीद हो गए, आपकी क्या मदद करेंगे? सलाम तेरी अकल पे। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। अज़ाने गिरामी, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, छठे इमाम ने फरमाया आखिरी जमाने में गिरबाल, सतो गरबलून, गिरबाल समझते हैं, छाना जाएगा। आप चाय, अब तो टी बैग्स आ गए हैं, तो पहले अब क्या, कौन सी मिसाल तो समझ में नहीं आ रहा है। फिल्टर्स होते थे ना, तो फिल्टर करते थे, ये पार चला जाए, तो उसमें क्या होता था कि जो अच्छी चीजें पार चली जाती थी, कुछ रुक जाती थी। मौला ने फरमाया सतो गरबलून, तुम्हें छाना जाएगा, you will be filtered, only the purest of the Shia will make it to the 12th imam. Pareshani ki baat hai ya nahi hai? Labbaik ya Mehdi, labbaik ya Mehdi, labbaik ya, meri baat pahunch rahi hai zane kirami, thodi si zehmat dunga aaj zane kirami. Ye aakhir zaman mein, jab us zamane mein itna kuch hua, sochiye aakhir zaman mein kitne fitne uthenge, कितने लोगों को गरबाल किया जाएगा। यू नो द पर्सन हु हर्ड द हदीस फ्रॉम द सिक्स इमाम, मौला विल बी फिल्टर्ड वंस, ही सेड नो मेनी टाइम्स, ओनली द प्योरेस्ट ऑफ यू विल मेक इट टू द 12th इमाम। बारहवें इमाम के खालिस तरीन, यहां तक खुदा की कसम की अजीब और गरीब रिवायत है, जब सोचता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मौला फरमाते हैं कि तमाम अंबिया, तमाम आइम्मा के अंसारो असहाब से अफजल बारहवें के असहाबो अंसार होंगे, वो जो 313 होंगे। और कहा मौला क्यों? कहा क्योंकि बाकी सब ने इमाम को देख के, नबी को देख के, नबियों को देखा, इमामों को देखा, फिर ईमान लाए। कहा बारहवें के मानने वाले बगैर देखे ईमान लाएंगे। हजार के में बड़ा आसान होता है, क्लेम करना बड़ा आसान होता है, उस पर डटना, कायम रहना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने चंद एक तल्ख बातें कही हैं, मैं जल्दी से चंद एक फजाइल के भी जुमले पढ़ दूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मैं नाउम्मीद कर दूँ, लोग होपलेस ना हो जाएं। अज़ाने गिरामी, ये बबी कभी भी ये ना कहने, मजहबी ये आलिम है, याद रखें शैतान से ज़्यादा तो इल्म किसी के पास नहीं था ना। आप लोग तो बहुत ही परेशान हो रहे हैं आज। शैतान के पास कैसा इल्म था? बताया हुआ था, हमने तो सुना है, अल्लाह ने पुतला बनाया आदम का, इबलीस ने सब देखा था डायरेक्ट, फिर भी कह दिया बेमा अगवैता नहीं, अल्लाह से लड़ रहा, परवरदिगारा तूने मुझे गुमराह किया। अल्लाह ने कहा मैं तो हिदायत देता हूं, रब्बे बेमा, कुरान है रब्बे में, अल्लाह से डायरेक्ट। अजाने गिरामी, कई लोग ऐसे होते हैं, मौला अमीर फरमाते हैं कई लोगों को मौका नहीं मिलता कि अपना बुग्ज और कीना बाहर निकाल सकें। मौला फरमाते हैं कूफे वाला, तुम्हें से बहुत से लोग शाम वाले को माविया को बुरा कहते हैं, तुम्हें मौका नहीं मिला, तुम अपना बोझ दिखाओ, तुम्हारे दिलों में मेरे खिलाफ कितना बोझ है। और क्या किया उन्होंने? दिखाया जनाबे ज़ैनब को। मैं जो पेश करना चाह रहा हूं, कई हुक्मरानों को मौका मिल जाता है, कुर्सी मिल जाती है, ओहदा मिलता है, कई को मेंबर मिल जाता है, उनका सारा जहर बाहर आ जाता है, होता है ऐसा। कई को मौका ही नहीं मिलता, वो बताएं कितने जहरीले हैं। मैंने बचपन में, मैंने एक स्टोरी, वो कार्टून था, मैंने स्टोरी तो नहीं पढ़ी थी, कार्टून था, ये बयान करूं ये। तो वो उसमें ना दिखाते हैं कि जंगल के सारे जानवर प्लान बना रहे होते हैं कि लायन जो किंग है ना उसको मार देते हैं, तो सारे जानवर कहते हैं उसको मार देते हैं, तो किसी ने कहा भाई हाथी से कहा तुम मार दो, उससे कहा नहीं तुम्हें नहीं पता लायन बहुत तेज होता है, वो अटैक करेगा, इससे कहा उससे कहा नहीं, सांप ने कहा मैं मार दूंगा, मेरे में जहर है, उसने कहा इतना सा तू सांप, इतना बड़ा शेर का नहीं, एक दफा ना मेरे जबान दांतों के नीचे आ गई, तीन दिन चक्कर आते रहे, पता नहीं मेरे जुमले पहुंचे या नहीं। वंस आई एक्सीडेंटली बिट माय ओन टंग, आई वाज ड्राउजी फॉर 3 डेज। कई मोमिनिन को पता ही नहीं चलता वो कितने जहरीले हैं, वो तो पता चलता है साथ में रहने वालों को, बीवी बच्चों से पूछो, पता नहीं लोग हैं नहीं हैं। जाने गिरामी, खुदा ना करे कि हमारी जबान में जहर हो। ये जानते हैं कि शुरू कहां से होता है? आपने पहले मोमिन की बीवी की, इसकी उसकी तोहिन की, फिर मां बाप, करते करते इमाम की नौबत आती है। ये डे वन पे कोई इमाम की तोहिन नहीं करता। मेरी आज तल्ख बातें शदीद तल्ख हैं, मेरी बातों को बर्दाश्त कीजिएगा।

फिर ही मरा था, वो तो कह सकते हैं। उत्तबा चलें, कुछ पाकिस्तान में बड़ा सोचना पड़ता है मुझे कौन सा नाम लूँ कौन सा नाम नहीं लूँ, और नाम ले लिया तो रज़ी अल्लाह कहाँ कहाँ लगाना है, बहुत है ना, बहुत टेक्निकल मसला है ये, काफ़ी टेक्निकल मामलात हैं, ये आप नहीं समझेंगे, मिंबर पे आने वाला बड़ा परेशान होता है। तो एक मरतबा मौलाना ने फरमाया, खबरदार अपने खानदान का हमारे खानदान से मुकाबला ना, मिन्न नबी व मिनकुमुल मुकज्जिब, हम वो जिनके खानदान से नबी अकरम, तू वो जिनके खानदान से नबी को झुटलाने वाला, उसका नाना उतबा। फिर मौलाना ने फरमाया, कहा कि मिन्ना असदिल्लाह, अल्लाह का शेर हमजा हम में से, तवज्जो, अल्लाह का शेर हमजा हम में से, व मिनकुम असदुल अहलाफ, अहलाफ जमा हलफ की हलफ, कसम खाना, और तू वो जिनके खानदान से झूठी कसमें खाने वालों का शेर, उसका मामू वलीद, सारे रिश्ते ऐसे थे। फिर मौलाना ने फरमाया, मिन्ना सैयदतो निसाइल आलमीन, कायनात की मलिका फातिमा हम में से हैं, व मिनकुम हम्मालतुल हतब, सूरह लहब के अंदर अल्लाह ने फरमाया, हाथ टूट जाए उम्मे जमील के, अबू लहब की बीवी थी, मुआविया की फुप्पी थी, अबू सुफियान की बहन थी, कितने रिश्ते बताऊं। अज़ाने गिरामी मौला ने फरमाया, मिन्ना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जवानान जन्नत के सरदार हम में से, मिनकुम सिबियतुन नार, तुम में जहन्नम के बच्चे, मिनकुम सिबियतुन नार, यजीद की तरफ इशारा है, तुम्हारे खानदान से जहन्नम के बच्चे हैं। क्या खबरदार अपने खानदान का हमारे खानदान से मुकाबला ना करना, और तू कहता है 60,000 तेरी फौज 20,000 मेरी, तो एक तलवार तू ले दूसरी मेरे पास है, वो जुल्फिकार, वो तलवार जिससे मैंने तेरे भाई मामू और नाना का सर उतारा था, राकस सैफो माई, वो तलवार आज भी मेरे पास है, न तलवार कुंद हुई है न अली का बाजू कमजोर। है दादी तवज्जो फरमा,

अजान के रामी नबुव्वत अल्लाह का मनसब है। इमाम फरमा रहे सात हमारे फजल है। उतीना सितन, छह चीजें अल्लाह ने हमें ता की वो फजलना बिसबइन, सात हमारे फजल। नबी हम में से, सिद्दीक हम में से, अल्लाह का शेर जाफर तैयार सिबतन, छह हो गए। सातवें कौन? मिन्ना महदी हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत का महदी हम में से है। भाई छठे इमाम की हदीस है, बनू मैया बनी हाशिम दो खानदान, इनके बड़ों ने हमारे बड़ों की मुखालफत की। लोग पहुंच रहे हैं या नहीं? मैंने नाम नहीं लिए हैं। भाई बनू मैया के बड़ों ने मुखालफत की थी या नहीं की थी? मुझे लग रहा है मुझे नाम लेने पड़ेंगे, मुझे पाकिस्तान जाना, खुदा रा खौफ कर लें। भाई बड़ों के नाम अगर नहीं आ रहे बनू मैया के तो मैं क्या करूं? सबसे बड़ी, मैंने भी घर की मजलिस में कहा था, सबसे बड़ी ट्रेजेडी इस्लाम के साथ यही हुई, जो फर्स्ट क्लास मोमिन था उसे काफिर बना दिया, और जो थर्ड क्लास काफिर था उसे मुसलमान बना दिया, बेटे को खलीफा बना दिया। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है इस्लाम के साथ। ये सारे बड़े मुखालफतें करते रहे, पैगंबर के कत्ल के मंसूबे बनाते रहे, मक्के में कत्ल का, फिर जंगे की सारी जिंदगी। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। मौला फरमाते हैं के बड़ों ने फिर मौला अली की मुखालफत की, फिर मौला हसन की, फिर मौला हुसैन को शहीद किया। लोग क्यों कहते हैं कि भाई मौला हुसैन के कातिल पे लानत, क्यों मौला हसन के कातिल पे क्यों लानत नहीं है या नहीं है? जब दोनों जवाना ने जन्नत के सरदार है तो फिर दोनों के कातिलों पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लेकिन वहां पे क्योंकि मामला जो है वो लोगों के लिए हजम करना मुश्किल हो जाता है। अजाने के रामी सिर्फ इनके, यानी अब आए मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, ये मुझे इमाम महदी से मुतालिक आखिरी बात को पेश करना है। तो मौला फरमाते हैं इस उम्मत के महदी हम में से, यानी बनू मैया के बड़े, खुदा की कसम रिवायात में, शिया सुन्नी रिवायात में, आखिरी ज़माने में इमाम महदी के जहूर से पहले सुफियानी आएगा। आपने कभी सोचा सुफियानी ही क्यों कहा? सुफियानी आएगा, यानी उसी की नस्ल से होगा। किसके हाथों मारा जाएगा? बारहवें इमाम के हाथों। अजाने के रामी, बहुत से लोग हमसे, मुझे अक्सर लोग आके बहसने लग जाते हैं, मौलाना ये अबू बकर बगदादी ये सुफियानी है? नहीं भाई, इसका नाम अबू बकर बगदादी है। भाई वो मुल्ला उमर सुफियानी है? भाई वो मुल्ला उमर है। मौला ने जब बता दिया कि सुफियानी का नाम होगा उस्मान, उस्मान इब्ने अम्बसा, आखिरी ज़माने में बनू मैया दोबारा पावर में आएंगे और फिर अहले बैत पे जुल्म करेंगे। जिस किसी का नाम होगा अली, हसन, हुसैन, अब्बास, जाफर, ये इमाम ने नाम लिए, कि जो इन नामों पे नाम रखेगा इराक में और शाम में उन्हें मार देगा, आखिरी ज़माने में आएगा। आजाने करामी मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, कितने लोगों ने इमाम महदी का नाम अडाप्ट किया? बनू अब्बास ने, खलीफा ने अपने बेटे का नाम रखा महदी, और कहा पैगंबर की हदीस ही आखिरी ज़माने में महदी आएगा, बारवां मेरा जानशीन होगा, मेरा बारवां 12th सक्सेसर होगा जो दुनिया में अदल इंसाफ कायम करेगा। कहा मैं हाकिम हूँ, मैं खलीफा हूँ, ये मेरा बेटा, ये महदी है। अब कई लोग धोखा खा गए। आठवें इमाम का ज़माना था, जैसे ही वो आवाज़ देता महदी, आठवें इमाम खड़े हो जाते, सर पर हाथ रखते और फरमाते अज्जलल्लाहु फरजा, अल्लाह उसे जल्द भेजे। पता नहीं लोग पहुँच रहे हैं, नहीं नहीं पहुंचा सका। लबैक भाई, 9 बज गए, मैंने मुकम्मल करना है मजमून को, बस मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, नहीं पढ़ता आगे, एक घंटा मेरा मूड नहीं था, थोड़ी सी आज तखीर हुई है। अजाने के रामी आइम्मा मुसलाम क्या समझा रहे हैं कि ये जो मेहदी बनी अब्बास मान रहे हैं, कभी वो मोहल्ले से पिट के आता है, कभी भाई से कुश्ती हार जाता है, कभी माँ से गालियां खाता है, और जिस मेहदी को आइम्मा अहले बैत मानते हैं उनके मासूम दादा ताजीम में खड़े हो जाते हैं। आपने गौर किया जिदाने के रामी, जहां छठे इमाम फरमाए लो अदरकत हो लखदम तो हो तो लयाती, अगर मैं अपने बेटे मेहदी के जमाने में होता मैं पूरी जिंदगी खिदमत में गुजार देता। कहा मौला आपका मैं भी वही हुज्जत हूँ, लेकिन इमाम ने क्यों फरमाया? कहा देखो मैं मासूम हो के कह रहा हूँ, मैं अपने पोते की खिदमत करता, खबरदार तुम में से कोई हया ना करे, शर्म ना करे हमारे बारहवें की खिदमत करने में। कहा अपनी जान निछावर कर देना उनकी खिदमत करना। चौथे इमाम फरमा रहे हैं कि इस उम्मत के महदी

काफिला तैयार हुआ। बहुत बड़े बड़े जय्यद इसके रावी हैं, रियाजुल कुस में है, तमाम किताबों में है कि एक मरतबा सारी बीबियाँ तैयार हुई और जब बीबियों में जनाब रबाब ने कहा अली असगर आपका नाम तो जानने वालों में है। जनाब अली असगर अभी बहुत छोटे हैं तो कहा कि चलिए, जनाब अली असगर नहीं आए। एक एक बीबी ने कहा, फिर आखिर में खुद मौला हुसैन तशरीफ लाए और जनाब अली असगर के कान में कुछ कहा। बहुत से उलमा कहते हैं कोई दुआ पढ़ी है, जनाब अली असगर आ गए मौला की गोद में। मेरा दिल कहता है मौला ने फरमाया होगा अली असगर अगर आप नहीं आएंगे तो हुरमला का तीर कौन खाएगा। बस एक मरतबा मौला ने कुछ कान में कहा, जनाब अली असगर फौरन बाबा की गोद में आ गए। अजरकुम अल्लाह। अब्दुल्लाह इब्ने तहान महारबी इसके रावी हैं, वो कहते हैं मैंने देखा, जब पता चला ना मैं मदीने से बाहर रहता था, सबब अपनी दुकान खोली थी, मदीने आता था सामान लेके जाता था, जब मैं मदीने आया ना तो देखा मदीने में कोई दुकान पे नहीं है, सब लोग रो रहे हैं। मैंने पूछा क्या बात है, कहा आज हुसैन जा रहे हैं, आज हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं खुद आया देखूं मदीने वाले नबी के नवासे को कैसे विदा करते हैं। कहा जब मैं आया ना देखा मौला हुसैन मसनद बिछा के बैठे हुए हैं, जनाब अब्बास ने ऊँटनियों पे पानी रखा और कहा एक एक करके सारी की सारी बीबियों को आवाज़ दी जाती थी, अंदर से खादिमा कहती थी कि कौन सी बीबी आ रही हैं। एक खादिमा ने कहा हसन की बेवा आ रही हैं। मौला हुसैन ने आवाज़ दी कासिम माँ का बाजू पकड़िए, अब्दुल्ला अपना घुटना ज़मीन पे रखिए, अली अकबर अम्मारी का पर्दा हटाइए। बीबी को सवार करा दिया, एक एक करके बीबियाँ आ रही हैं। रावी कहता है मैंने एक मरतबा सुना कि किसी ने अंदर से आवाज़ दी अली की बेटी उम्मे कुलसूम आ रही हैं। कब बस ये सुनना था, देखा मौला हुसैन ने आवाज़ दी अब्बास आप बाजू पकड़िए, अली अकबर अम्मारी का पर्दा हटाइए, कासिम घुटना जमीन पे रखिए। कहा इतने में अंदर से आवाज आई अली की बेटी ज़ैनब कुबरा। कहा बस बीबी का नाम आना था, मौला खुद खड़े हो गए। कहा जब सब खड़े हो गए मैंने देखा मौला आगे बढ़े, जनाबे ज़ैनब कुबरा आई। कहा भैया आज मैं किसी से सवार नहीं होंगी। मौला ने एक एक करके सबको बुलाया होगा ना, कहा होगा अब्बास जैनब को आप सवार करा दीजिए नाका पे, अली अकबर आप, ओनो मोहम्मद आप। जब बीबी ने कहा ना नहीं भैया, कहा बहन मैं आपका बाजू पकड़ लूं, कहा नहीं भैया मुझे माफ कर दीजिए, उसे बुलाइए जो 11 मुहर्रम को मुझे नाका पे सवार कराएगा। मौला ने आवाज दी सैयद सज्जाद अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। मुझे जनाब फातिमा सुगरा के सारे मसाए पढ़ने थे। आप जानते हैं मदीने में आज वो मकामात अभी भी मौजूद हैं, खुदा की कसम मैंने खुद ज्यारत की, वहाँ के मकामी मोमिनीन ने मुझे बताया ये वो जगह है जहाँ जनाब फातिमा सुगरा काफिले को अलविदा कहने आए थे। आज भी वो मदीने में मकाम है जहाँ एक बीबी ने कहा बाबा खुदा हाफिज, मौला ने कहा बेटी इससे ज्यादा आगे ना आना। आप जानते हैं ना बाप को बेटियों से बड़ी मोहब्बत होती है, और अगर कोई बीबी बीमार हो, मेरा दिल कहता है बीबी बार बार कहती होंगी बाबा जब आप भैया अली अकबर की शादी करें तो मुझे बुला लीजिएगा। बस भाई मैंने तमाम कर दिया, अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके करबला चलिएगा। अल अनवारुन नुमानिया सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी जिल्द नंबर 3 से ये मैं रिवायत पेश कर रहा हूँ। कहा जैसे ही रोज़े आशूर जोहर के बाद जनाब अली अकबर को बरछी लगी तो उस वक्त एक कासिद, एक आदमी जो पैगाम लाता है, कासिद सुगरा पहुंचा। जब कासिद जनाब सुगरा पहुंचा ना जोहर के बाद तो उसने आके सवाल किया इस मैदान में कोई हुसैन इब्ने अली भी है। लश्कर यजीद ने इशारा किया वो जो सामने एक लाशे के पास बैठे रो रहे हैं वो हुसैन है। मीर अनीस कहते हैं इस मकाम पे ये तो न कह सके कि शहे मशरकैन हूं, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूं।
قاصد آگے بڑھا پوچھا کیا آپ حسین ابن علی ہیں؟ تو مولا نے کہا ہاں

साल से ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाया है, और वहाँ एक से एक शैतान बच्चे बैठे होते थे, रहमान बच्चे भी बैठे होते थे। तो अगर आप एक क्लास के अंदर बैठे हैं और वहाँ बहुत तेज़ बच्चे बैठे होते हैं, तो आपकी आँखों और कानों को बहुत तेज़ होना होता है, वरना वो बच्चे बड़े तमाशे करते हैं। फिर अब उसके नतीजे में जब हम मजलिसों में आते हैं, तो मजलिसों में तो ओपन फोरम होता है, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं होता। तो मिसाल के तौर पर यहाँ कोई कैमरे के सामने से गुजर जाता है, उसको पता भी नहीं चलता कि मैं कैमरे के सामने से गुजर गया हूँ, हमें नज़र आ रहा होता है। दो लोग बात कर रहे होते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, वो सोचते मौलाना मजलिस पढ़ रहे हैं, इनको नज़र नहीं आएगा। नहीं, सब नज़र आ रहा होता है। मत करें फिर, ये डिस्टर्ब होते हैं, फिर टाइम ज़ाया होता है, अटेंशन ज़ाया होती है। आप कुछ और सुनने के लिए आएँ, फिर मैं आपको कुछ और सुनाऊँगा, आपका वक्त ज़ाया होगा। परवरदिगार इंशाअल्लाह आपकी और हमारी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह इस आज़ादारी के सदक़े में जो बेहतरीन नतायज हमें दुनिया में मिलने चाहिए, आखरत में मिलने चाहिए, खुदा सब नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। नस्लों की हिफाजत के लिए, इस पैगाम की नस्लों तक मुंतकिली के लिए, इंशाअल्लाह क़यामत तक हमारी नस्लें दीन, क़ुरान, नबी और आले नबी के वफ़ादार जानसारों, दुरूद भेजें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। की तरफ से हो रहा है, कुल लन युसीबना इल्लमा कतबल्लाहु लना, ये कहिए कि हम पर कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी सिवाय उसके जो खुदा ने लिखी हो। ये तौहीद खुदा हमसे चाहता है कि हमारे अंदर हो। तो फिर मिसाल के तौर पर कोई कहेगा कि भाई कोई बुराई भी तो आती है। एक तो है कि जो हम लोगों का बुराई को देखने का लेवल है, अगरचे बात बीच में आ गई लेकिन मैं अर्ज़ करता चलूँ, मैंने कहीं भी कुछ दिन पहले बहुत अच्छा बयान पढ़ा था, उसमें बहुत अच्छा लिखा था कि हम लोगों का बुराई को देखने का लेवल हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है? मतलब मैं इंसान हूँ और मैं अपने लेवल पे बैठकर हर चीज़ के बारे में ये जजमेंट देता हूँ, ये बुरी है, ये अच्छी है, ये बुरी है, अच्छी है। अच्छा, इस अच्छाई और बुराई का स्केल और एक्सेस कौन है? मैं खुद। जो मेरे लिए अच्छा है वो अच्छा है, जो मेरे लिए बुरा है वो बुरा है। ये जो देखने का लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, इंसानों का लेवल। अच्छा, अगर हम इसको अगर इस्तिलाहन ये कहें इलाही मंजर, इलाही मंजर क्या है? आप ऊपर चले जाएं, कायनात के ऊपर, उस कायनात के ऊपर पूरे सिस्टम को देखते हुए बताएं अब अच्छा बुरा क्या है। अपने आप को सेंटर ऑफ यूनिवर्स क्यों बनाया हुआ? हम क्या सेंटर ऑफ यूनिवर्स हैं? ये किसने हमें गुमान दिया? हम अपने लिए सेंटर ऑफ यूनिवर्स हो सकते हैं, लेकिन ये कायनात मैं थोड़ी हूं सिर्फ। इस कायनात में 7-8 अरब इंसान रह रहे हैं। उन 7-8 अरब इंसानों की ये जो 150 साल की जिंदगी है, ये इस पूरी यूनिवर्स की हिस्ट्री में समंदर में कतरे का पानी भी नहीं है, पानी का कतरा भी नहीं है। इस यूनिवर्स की हिस्ट्री, हत्ता अगर हम बिग बैंग को स्टार्टिंग पॉइंट ले लें, तब 13 सम बिलियन ईयर्स है। उस 13-13.5 बिलियन साल के अंदर जो स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स और फना फना हैं, वो बिलियंस बल्कि ट्रिलियंस हैं। उन बिलियंस और ट्रिलियंस के अंदर जिनको होते हुए बिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए हैं, उनमें एक प्लैनेट के ऊपर 8 बिलियन में मैं एक हूं, और मेरी जजमेंट यह है कि यह अच्छा है और यह बुरा है। ये कैसे हो सकता है? हत्ता ये फ्लड जिसके अंदर कई हजार लोग अपनी जानों से महरूम हो गए, और मसलन 1,500 या 2,000 के करीब या लाखों लोग बेघर हो गए, और मिसाल के तौर पर ये सफरिंग उनके अंदर फर्ज कर लेते हैं 4 साल रहेगी, 5 साल रहेगी, नहीं मालूम। जिनके बच्चे मुश्किल में हुए, जाहिर है उनके दिलों के ऊपर एक दाग रहेगा, वो 50 साल रहेगा। 50 साल पूरी कायनात में कितनी मुद्दत है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये सब दाग लेने वाले हमेशा इस दुनिया में रहेंगे? नहीं, वहीं जाएंगे जिस खुदा ने इनको ये दाग दिया था, फिर वो इंसाफ करेगा। तो ये जो बुराई लग रही है, ये क्या है? ये मुझे बुराई लग रही है मेरे मंजर में। अगर उस

जो भी कोई काम किया होगा मैं कम से कम एक दफा अपनी जिंदगी में जरूर करूंगा। तो किसी मौके पर अल्लाह के नबी ने किसी जंग के अंदर एक खास जानवर का गोश्त खाया था और अल्लामा तबतबाई के लिए साबित हो गया कि यह हुआ था। कहीं से वो गोश्त ढूंढ कर लाए, उन्होंने कहा मुझे एक दफा खाना है। वो चूंकि मैंने अहद किया है कि नबी ने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया होगा मैं कम अज कम एक दफा जरूर करूंगा। तो फरमाया इमाम ने कि नेकी की कोई हद ऐसी नहीं जिसका इसने इरादा ना किया हो, और कोई जगह ऐसी नहीं जहां नेकी का इम्कान हो और उसने कस्द ना किया हो। इसने अपनी बागडोर कुरान के हाथ में दे दी, वही इसका रहनुमा, इसका पेशवा है, इसका जहां उसका बारगरा उतरता है वहीं उसका सामान उतरता है, जहां उसकी मंजिल होती है वहीं पड़ाव डालता है। ये सब इमाम ने उस अच्छे बंदे के लिए बयान किया। और उसके बाद फरमाया इसके अलावा एक दूसरा शख्स होता है जिसने ज़बरदस्ती अपना नाम आलिम रखा है जबकि वो आलिम नहीं है। अब आलिम कौन हुआ? आलिम वो हुआ जिसकी मेमोरी शार्प है, धैर्य के नहीं। आलिम वो हुआ जिसको हदीसें ज़्यादा आती हैं, कुरान हिफ्ज़ है, धैर्य के नहीं। शायद ये एक ज़माने में इंस्ट्रूमेंट्स हों, शायद अब वो भी ना रहे हों, तो ये आलिम नहीं है। फिर ये जो आलिम अभी तक दो सफ़ों में बयान हुआ ये कौन था? ये आलिम वो था जिसने अपनी ज़िंदगी में हकीकत का इरादा किया, नफ्स की मुखालफत की, उस रास्ते में जितनी कुर्बानियाँ थीं वो देना शुरू कर दी, शहवतों को उतार के फेंक दिया, दुनिया के अंदेशों से बेफिक्र हो गया, अल्लाह ने उसको हिदायत का चिराग बना दिया, वो हर नेकी तक पहुँचने लगा और ये सारे काम सरचश्मे हिदायत तक खुदा ने उसको पहुँचाया। ये आलिम है। अब इसके मुकाबले में कौन आएगा देखते हैं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद। अच्छा, अब एक गलत काम कहीं ऐसा ना हो कि हम ये करने लगें कि हम अपनी ज़िंदगी में जो चंद लोगों को जानते हो उनको क्लासेस देने लगें, तुम आलिम तुम गैर आलिम तुम, ये हरगिज़ नहीं कीजिएगा। क्यों? इनमें से बहुत सारी चीज़ें सुएजन बनेंगी, बदजनी कहलाएगी, तो आप ये हरगिज़ मत कीजिएगा। आप इसको अभी अपने और किताब के दरमियान रखें, यानी मैं ये ना करूं कि इसके ज़रिए से दूसरों के बारे में जजमेंट देना शुरू करूं, मैं इसके ज़रिए अपने बारे में जजमेंट दूं। मैं ये, मुझे खुदा ने कब इस बात की जिम्मेदारी दी है कि मैं दूसरों के बारे में तय करूं कि वो नहजो बलागा की रौ से फासिक है या फाजिर है, मोमिन है या आदिल है? ये मुझे कब खुदा ने दिया? ये मेरी जॉब नहीं है, मेरा काम नहीं है। ये मेरा काम ये था कि मैं इसको पढ़ूँ और इसके हिसाब से देखूँ मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो ऐसा ना हो कि हम बातें करते करते ये काम अपने दिमाग से करना शुरू कर देंगे, हम दूसरों के बारे में जजमेंट देना शुरू कर देंगे। हक हमें नहीं मिला है, हमें ये मिला है कि हम इससे खुद सीखें। अब इमाम ने फरमाया दूसरा शख्स है जिसने ज़बरदस्ती अपना नाम आलिम रखा है हालांकि वो आलिम नहीं है। क्यों आलिम नहीं है? इसने जाहिलों और गुमराहों से जहालतों और गुमराहियों को बटोर लिया है, लोगों के लिए मकर फरेब के फंदे, गलत सलत बातों के जाल बिछाए हुए। चार बातें चार जाहिलों से सीखता है, चार बातें चार नादानों से सीखता है, उनको खूबसूरत से जुमलों में ढालता है, लोगों को देता है, अपनी इल्मी काबिलियत जमाता है। अब वो मुमकिन है मिंबर पे बैठ के करे, मुमकिन है मोहल्ले में बैठ के करे, मुमकिन है खानदान में बैठ के करे। वो ज्यादा गलत कर रहा है, ये छोटा गलत कर रहा है, गलती में दोनों एक ही हैं। हम फिरौन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मिस्र के बादशाह हम नहीं है। तो मुमकिन है तुम्हारा मिस्र इतना सा हो जिसके तुम फिरौन हो। मैं कारून नहीं हूं क्योंकि मेरे खजाने इतने नहीं हैं कि जिनको 70 आदमी उठाएं। मुमकिन है तुम्हारा खजाना चूंटी के मुंह में रखा हुआ एक दाना हो, तुम उसके कारून हो। मैं उसका कारून हूं। मैं सामरी नहीं हूं क्योंकि मैंने गौशाला नहीं बनाया जिसमें आवाज डाली हो, मुमकिन है तुमने जादू कहीं और किया हो। मैं बनी इसराइल को गुमराह नहीं कर सका, तुम्हारा बनी इसराइल दो आदमी थे, तुमने उनको गुमराह कर लिया। ये कुरान करीम के जो किरदार हैं, ना किरदार मिटे हैं ना किरदार खत्म हुए हैं, ये किरदार

ये जिंदा नहीं है, सब मरे हुए हैं। तो घर खानदानी मकबरे बने हुए हैं, क्यों? क्योंकि रूह में डेड है, मरी हुई रूह है, तरक्की नहीं है, हरकत नहीं है। तो ऐसा ना हो कि हमारे घर हमारे मकबरे बन चुके हों। इन घरों में कुरान की तिलावत होनी चाहिए, इन घरों में अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, नबी औलाद नबी का जिक्र होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे घरों को बेनूरानियत इतनी घेर ले कि हमारे ख़ानदानों के मकबरे बन जाए। और बदकिस्मती से बाज़ मकबरों में वो गुनाह नहीं होते जो जिंदा घरों में होते हैं, शायद मकबरों से भी बदतर हो जाते हैं बाज़ घर, क्योंकि मकबरों में गुनाह नहीं हो रहे होते लेकिन घरों में गुनाह हो रहे होते हैं। तो अगर वो नहीं सीख रहे और पढ़े हैं तो शायद मकबरे हैं, और अगर गुनाह भी कर रहे हैं तो और बदतर हो गया। इमाम ने फरमाया जो शख्स है ये क्या है, मैयतुल अहया, ऐसा जिंदा है जो मैयत है, मरा हुआ है। ये तो जिंदों में चलती फिरती लाश है। अब तुम बताओ तुम कहां जा रहे हो, अइना तज़बून। हाँ, इमाम ने फरमाया तुम कहां जा रहे हो, अइना तज़बून, यहां वो अन्ना तूफकून, तुमने कहां का इरादा किया है, हालांकि हिदायत के झंडे बुलंद, निशान जाहिर और रोशन, हक के मीनार नज़्म है, तुम्हें कहां बहकाया जा रहा है, क्यों इधर उधर भटक रहे हो, जबकि तुम्हारे नबी की इथरत तुम्हारे दरमियान मौजूद है। इथरत नबी हिदायत का मीनार है, तुम उससे क्यों नहीं सीखते, और तुम क्यों आते हो, पता नहीं किसी फिलोसोफर ने यह कहा है और पता नहीं किसी साइंटिस्ट ने यह कहा है, और वो व्हाट्सएप के ऊपर एक दूसरे को भेजे जा रहे हैं पागलों की तरह, ना उसकी सोर्स पता, ना उस बंदे का पता, ना उसकी आइडियोलॉजी पता, ना उसकी थिंकिंग पता है, और जुमले एक दूसरे को बताए चले जा रहे हैं, एक दूसरे से मुतासर हुए जा रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमें सीखने के लिए इब्राहिम लिंकन चाहिए। क्या हो गया, जहालत में क्यों इतने पड़े हो? इमाम फरमाए तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ हंकाए जा रहे हो बिलावज में, क्यों इधर उधर भटक रहे हो, जबकि तुम्हारे नबी की इतरत तुम्हारे अंदर मौजूद है, जो हक की बागें, दीन के परचम, सच्चाई की जमाने हैं, जो कुरान की बेहतर से बेहतर मंजिल समझ सको, वहीं उन्हें भी जगह दो, प्यासे ऊँटों की तरह उनके सरचश्मे हिदायत पर उतरो। कभी जानवर को आप चला रहे हो, वैसे तो अल्लाह ना करे कोई वक्त आए कि आप चलाएं, लेकिन अगर कभी चला रहे हो, मुझे एक आध दफ़ा मौका मिला ईरान में कि मैं किसी कैंपिंग साइट में गया और वहाँ पर रोड से उतर कर जो ट्रैवलिंग थी वो 3 दिन थी, तो सब कुछ सामान जानवरों पे होता था। तो वो 3 दिन मैंने भी कहा मैं चैलेंज देता हूँ, देखता हूँ मैं कर सकता हूँ, नहीं कहा, जवान था उस वक्त तो मैं किया उसको। तो बीच में क्या होता था कि कभी ना कभी ऐसा टाइम आ जाता था कि भाई पानी ख़त्म हो गया है, खाना ख़त्म हो गया है, अब आप वेट कर रहे हैं कि अगला जो आपका पड़ाव है वो कब आएगा। उस वक्त जब जानवर प्यासा हो और पानी नजर आए, फिर जरा आप उसको रोक के देखें, ऐसा फेंकेगा पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए, जानवर नहीं रुकता, फिर वो पानी पे जाता है सीधा पानी पीने के लिए। इमाम फरमा रहे हैं तुम क्यों इस तरह प्यासे ऊँटों की तरह अपने नबी की औलाद के पीछे नहीं चलते, तुम सिर्फ उनसे लो, कैसे वो जब पानी को देखता है तो ना तुम्हारी सुनता है, ना भागें खींचते रहो, कुछ नहीं करो, उसने जाना है वहीं पर है, तुम क्यों इस तरह नहीं कर रहे? अगर ऐसे करते, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, यानी मैं खुद परेशान हूँ इस लिहाज से, मतलब स्कूल हम भी बनाते हैं फिर वही हमें वही सिलेबस डालने पड़ते हैं, और बाद अवकात इतना अहमकाना लगता है कि इन पढ़ाने इन में से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, शायद कम अज़ कम भी कम अज़ कम 50% ऐसी हैं जिनका ज़िंदगी में कोई असर नहीं होने वाला। इस वक्त दुनिया के एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हम सबको मालूम है आ गया है। अमेरिका जिसको हम लोग पता नहीं क्यों बेवकूफ़ों की तरह हमारी बहुत सारे लोग आइडियलाइज़ किए बैठे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हम फरसूदा तरीन निज़ाम लिए बैठे हैं एजुकेशन के अंदर, कबूल करते हैं, पता नहीं कितने क्रिटिक्स हैं उन लोगों के, और वो सब मान रहे हैं कि हाँ भाई हम लोग डूब गए, हम लोग बड़ा गर्क हो गया हमारा। हत्ता वो स्कैंडिनेवियंस को कहते हैं कि आपके पास बहुत अच्छा निज़ाम है, हमारे पास ख़राब है, और पता नहीं क्यों हम लोगों के दिमाग में अमेरिका फंसा हुआ है। तो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि भाई क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक जो कुछ आपने पढ़ाया बच्चे को, इसमें से 30% भी उसकी फ्यूचर की लाइफ में काम नहीं आएगा, सब बेकार, पता नहीं क्या पढ़ाया। अब यही हम लोगों की मुश्किल बन गई कि हम इधर उधर की

पढ़ाए जा रहे हैं पढ़ाए जा रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं और खुद भी स्कूल बनाएंगे फिर वही करेंगे। और जो हमने बच्चों को बता देना था वो पता नहीं वो बेचारे कहाँ सीखेंगे और हम उनको बेचारों को कब बताएंगे। तो ये एक अजीब मुश्किल फंस गई है। ए लोगो, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो इंसान शनासी से मरबूत खुतबा नंबर 85 में था वो इस जगह तक था, लेकिन मैं सोचा खुतबा यहाँ तक आए तो एक पैराग्राफ और हम पढ़ लेते हैं और उसमें अल्लाह के नबी का तज़किरा है। ए लोगो, नबी के इस इरशाद को सुनो, नबी की ज़ात पर दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। ए लोगो, खातमुन्नबीन के इस इरशाद को सुनो कि उन्होंने फरमाया हम में से जो मर जाता है वो मुर्दा नहीं है, हम में से जो मर जाता है वो मुर्दा नहीं है, हम में से जो बेजाहिर मसलन लगता है कि कब्र में बोसीदा हो गया होगा, फरमाया वो हकीकत में कभी बोसीदा नहीं होता। जो बातें तुम नहीं जानते उनके मुतालिक ज़बान से कुछ ना निकालो, इसलिए कि हक का बेशतर हिस्सा उन्हीं चीज़ों में है जिनसे तुम बेगाना और ना आशना हो और तुम्हारी कोई हुज्जत उस पर तमाम ना हो, उसे माजूर समझो। क्या मैंने तुम्हारे सामने सिखल अकबर कुरान करीम पर अमल नहीं किया और सिखल असगर अहल बैत को तुम में जिंदा नहीं रखा? इमाम अपने बारे में इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हारे दरमियान ईमान का झंडा गाड़ा, हलाल और हराम की हदें बताई और अपने अजल से तुम्हें आफियत के जामे पहनाए, कौल व अमल से हुस्न सुलूक का फर्श तुम्हारे लिए बिछा दिया, तुमसे हमेशा पाकीज़ा अखलाक के साथ पेश आया, जिस चीज़ की गहराइयों तक निगाह ना पहुँच सके और फिक्र की जौलानियाँ आजिज़ रहें उसमें अपनी राय को कारफरमा ना करो। इमाम फरमा रहे हैं जहाँ तुम्हारा बस नहीं है वहाँ पर बेतुकी बात मत करो, ठहर जाओ। तो ये जो व्हाट्सएप के मुज्तहिदीन हर रोज़ नए नए फतवा देते रहते हैं, ये बेतुकी हरकतें करते हैं, ये राय सही नहीं है, ये आयत ये मतलब नहीं है, ये रिवायत तो गलत हो गई, ये क्या हो गया, कहाँ से इल्म लाए, कहाँ से सीखा, बेतुकी बातें। चूँकि एक सिम के पीछे छुपे हुए हो तो अपने छुपे हुए अंदर बैठकर जो बोलना है बोलते रहते हो, अगर हिम्मत है तो आओ आवाम के सामने ताकि तुमसे आवाम पूछे कि तुम्हारे पास आया कहाँ से ये इल्म, किसकी बेस पे बोल रहे हो, छुप छुप कर वार कर रहे हैं। और मुझे यकीन है इनमें बहुत सारे ऐसे बकबक करने वाले, इनका कोई ताल्लुक दीन ईमान मजहब तशय्यो तसन्नुन किसी से नहीं होगा, ये सिर्फ वो बेगैरत हैं जिनका काम ही ये होगा कि वो दीन के नाम पे फितने फैलाएं। अब मैं यहां बैठा हूं तो मैं सोच रहा हूँ ये किसी सुन्नी ने कहा होगा, वो सुन्नी बेचारा वहां बैठा होगा कहकर किसी शिया ने कहा होगा, हद तक क्रिश्चियन कह रहा होगा ये मुसलमान मेरे लिए बकरा है, वो मुसलमान सोच रहा होगा क्रिश्चियन मेरे लिए बकरा है। इसको किसी को किसी से कोई गरज नहीं होगा, इंसानियत के दुश्मन बैठे हैं बहुत सारे, उनका काम ही यही है। आप अफ्रीकन कंट्रीज चले जाएं, एक मुल्क कॉन्गो जिसको पहले पता नहीं ज़ाइर कहते थे, अब उसको DR कॉन्गो कहते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मिनरल्स भरी पड़ी हैं। जो आप कीमती मिनरल्स दुनिया में जानते हैं, डायमंड प्लेटिनम गोल्ड सब उसके अंदर है वहां पर, सही, एक दिन जंगों से चैन नहीं ले पा रहे, इतनी फर्टाइल लैंड है, इतनी फर्टाइल लैंड है। मैं वहां पे गया 2-3 दफा, जो अब गया तो वहां पर मतलब कोई ये बता रहा था कि हमने किसी माली को हायर किया कि वो एक बहुत बड़ा लॉन था उसमें पौधे लगाए, तो पौधे की उसको सब बताया, ये पौधा यहाँ लगना है वो पौधा वहां लगना है। कहने गए एक चंद हफ्तों के बाद देखा कि जहां हमने नहीं कहा था वहां पे पौधा लगा हुआ है, जिस पौधे को हमने कहा था उस कोने में लगना चाहिए देखा बीच में निकला हुआ है। अब क्या बीच में भेज तो के यहां तो हमने घास का कहा था, तो उसको बुलाया कि ये पौधा यहां से कैसे निकल आया। कहने लगा कि भाई मेरे हाथ से बीज गिर गया होगा, यहां तो जमीन तुम्हें पता है जहां बीज गिर जाता है निकल आता है, इतनी फर्टाइल लैंड है। और लोगों की गुर्बत जाके देखिएगा, खुदा शाहिद है मैंने अपनी आंखों से, किसी ने मुझे कहा, मैंने कहा भाई ऐसा है सुनना कुछ और होता है, पहले मुझे दिखा दो। कहने लगा मौलाना बहुत रश होगा वहाँ पे, पुराना एयर वहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन था, अब तो रेल भी बंद हो गई वहाँ पे, तो कहने लगा उस रेलवे स्टेशन में एक मार्केट है वहाँ पे ये होता है। मैंने कहा मुझे दिखाओ। कहने लगा मौलाना बहुत रश होगा। मैंने कहा मैं देखना चाह रहा हूँ अपनी आँख से।

देखूंगा। मुझे बड़ी मुश्किल से वो ले गया, मैंने कहा कहाँ पर है? उसने शीशा नीचे करके कमर में, वो देखें वो आपको नज़र आ गया? मैंने कहा हाँ मुझे अब नज़र आया है। तो उसने मुझे बताया था मौलाना यहाँ प्याज किलो में नहीं बिकती, यहाँ एक प्याज के चार

तो मैंने कहा मुझे दिखाओ कहाँ बिक रहा है। मैंने अपनी आँखों से देखा हाँ बिक रहा, ये गुर्बत है। और ये किस मुल्क की कहानी है जहाँ पे जहाज उतर रहे हैं, निकाल रहे हैं और ले जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है क्या कस्टम है, क्या टैक्सेशन है, क्या दिया आपने इस मुल्क को, कुछ नहीं। और क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो जंगों में मुब्तला किए हुए, पूरा मुल्क सिविल वॉर में कब से मुब्तला हुआ हुआ है और ये सब लूट रहे हैं यूरोपियंस और अमेरिकन्स। हर अफ्रीकन कंट्री के अंदर कहानी यही है। बुरुंडी, रुवांडा दो मुल्क हैं, 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 20 लाख ऐसी आबादी है। दोनों के अंदर दो कबीले हैं, हुट्सू टूट्सी, हुटू और टूट्सी। 95 की बात है शायद, मुझे याद आता है सिविल वॉर हुई और वो तरीका वही है लूटने का तरीका, जंग करवाओ, यूरोपियंस जंग कराते हैं। बेहतरीन दुनिया की जो चाय है वो यहाँ बनती है, आपको नाम भी नहीं पता होंगे, दुनिया की बेहतरीन चाय यहाँ बनती है। यानी गवर्नमेंट जो ऑक्शन करती है चाय, कीनिया के अंदर ऑक्शन होता है, दुनिया मुख्तलिफ मुल्कों में होता है, तो रुवांडा की ऑक्शन की चाय $4 फी किलो होती है। गवर्नमेंट जो ऑक्शन कर रही है, अभी इसको लेने वाला लेके जाएगा, दूसरे कंट्री पहुंचाएगा, प्रोसेसिंग करेगा, सब कुछ करेगा, फिर आपको डिब्बे में मिलेगी। गवर्नमेंट के ऑक्शन के अंदर चाय $4 फी किलो होती है, इतनी अच्छी चाय है। सही है, 95 में यहाँ पर सिविल वॉर हुई जो मुझे याद आ रहा है, अभी 95 मुमकिन है कोई और साल हो। 3 महीने के अंदर दो कबीलों ने एक दूसरे के 8 लाख बंदे मारे थे। 10,000 डेली का एवरेज आ रहा है, 8,000 या 10,000 आप तसव्वुर कर सकते हैं। और ये सब अपने सैटेलाइट से उन दरियाओं के अंदर लाशें देखते रहे जिनमें से एक पे भी सर नहीं था, और हजारों के अंदर वो लाशें आती थी दरिया में, ये तमाशा देखते रहे। और वो चाय जो $4 फी किलो बिकती थी, उस जमाने के बाद जब ये हो गया वो हो गया खत्म हो गया, 75 सेंट फी किलो बिकी है। ये जंग करने का फायदा हुआ इन्हें, ये पूरे अफ्रीका का हशर है। ये इंसानी तबीयत है, ये हवा व हवस की पैरवी का नतीजा ये है। और अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग मुसीबत में मुब्तला हैं। क्यों? चंद लोगों की हवा व हवस, जिन्होंने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया, करोड़ों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, और बस वही हवा व हवस का बाजार गर्म। तो ये वो तलखी है जो इस हवा व हवस के पीछे छुपी हुई है। बेजाहिर बहुत अच्छा लगता है कि एक आदमी जो दिल में चाहे खाए, जो दिल में आ रहा है पिए, लेकिन एंड भी तो सोचो, एंड क्या है, एंड ये है। और अभी ये भी नहीं पता कि ये एंड हो, नहीं मालूम इसके बाद क्या है। पूरे अफ्रीका के अंदर तकरीबन फैमिली नाम की कोई चीज नहीं बची है। रूटीन है कि कोई मर्द अपने बच्चे नहीं पाल रहा है, सिर्फ खवातीन पाल रही हैं, सिंगल पेरेंट फैमिलीज रूटीन है वहां पर। यह हवा हवा इसका नतीजा है। आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने माशरे के अंदर बहुत सारी चीजों को अभी अपनी जगह पे देख रहे हैं, इसको लूटने ना दें इतनी आसानी से। और जो कह रहे हैं ना अब इससे बुरा क्या होगा, अभी नहीं पता तुम्हें इससे बुरा क्या हो सकता है, अभी बहुत गुंजाइश है बुरे होने की। क्यों बुराई पुकार रहे हो, अभी तो देखा नहीं है हमने, खुदा आपको ना दिखाए। जो मैं मेरे जैसा आदमी वहां जाता है, खुदा शायद खाना खाना मुश्किल पड़ जाता है, इतने बाहर भूखे बैठे हैं। इतनी मुसीबत में लोगों को इंसान देख देख के कुड़ कुड़ के कहता है भाई मैं खाना कैसे खा रहा हूं। यहां पर भी है ऐसा, लेकिन वो आलम ही कुछ और है। आपको मैं खुदा शाहिद है मैं कह रहा हूं, आप एक बर्गर लें, अपने दांत से काटें, दांत से काटें और एक को पकड़ा दें, मजे से लेगा आपसे, शुक्रगुजार होगा आपका। यहां तक पहुंचता है मामला। अब इसके पीछे जो फसाद अखलाकी अखलाकी मफासद आएंगे वो आप खुद समझ जाएं। फिर यहां पे क्या बताने की क्या जरूरत, आप खुद समझ जाए क्या क्या हो रहा होगा वहां पर। तो अजीजान मोहतरम, ये सब नफ्स परस्ती का आगाज बेजाहिर छोटा सा होता है, लेकिन

0: एंड बहुत बुरा है फिर। तो यही कंट्रोल होना बहुत अच्छा हो कि जल्दी कंट्रोल हो जाए, आपकी उम्र अगर कम है जल्दी कंट्रोल कर लें, ज़्यादा उम्र के भी हैं मौत से पहले कंट्रोल कर लो, मौत के बाद तो कम वैसे ही मामला निकल जाएगा। तो इंशाअल्लाह खुदा तौफीक नसीब फरमाए। बहुत वक्त लिया मैंने आपका ये सईद शोदा की अज़ा के सदक़े में, खुदा मुताल ने हम लोगों को दर्सगाह दी हुई है सईद शोदा की अज़ा के सदक़े में, अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के सदक़े में नहजो बलागा आपके और हमारे दरमियान अभी तक बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और सबसे बड़ा जो कारनामा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन असर वो ये कि आपके और हमारे दिलों के अंदर रिक्क़त बाकी है, अभी मोहब्बतें बाकी हैं, हमदर्दियाँ अभी बाकी हैं, कसीओ कल्ब नहीं हुए अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर कोई मुझे ये बताए, गारंटी से कह रहा हूँ, अगर मुझे कोई ये बताए कि सैयदुश्शुहदा के गम में रोने वाले ने अपने किसी दुश्मन को प्यासा मारा, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ फिर वो इमाम हुसैन के गम में नहीं रोता होगा, हो ही नहीं सकता। सैयदुश्शुहदा के गम में रोने वाला कभी ये काम नहीं करेगा। सैयदुश्शुहदा के गम में रोने वाला तो प्यासे के नाम पर रो पड़ता है। सैयदुश्शुहदा के गम में रोने वाला क्या नहीं जानता कि यतीमा किसे कहते हैं? कितनी दफ़ा दुनिया के अंदर हादसात होते हैं, सानहात होते हैं, लेकिन सैयदुश्शुहदा की मोहब्बत ने इंसानों को एक ख़ास लम्हे की तरफ तैयार कर दिया है। और जब भी इंसान के जहन में ये तसव्वुर आता है अल्लाहु अकबर, कोई जिंदान हो जहाँ पर एक बच्ची रो रही हो, तसव्वुर काफ़ी है, तसव्वुर काफ़ी है। मेरे जहन में बार बार ये जुमला आता है और आज भी कहीं पे अर्ज़ कर रहा था कि आशूर के दिन सैयदुश्शुहदा की मजलूमियत की अलामत हज़रत अली असगर के गले पर तीरे सितम चलना है। हर शहीद की शहादत मजलूमियत की अलामत थी, लेकिन सैयदुश्शुहदा के उस छः महीने के बच्चे के गले पर तीरे सितम चलना, वो अलामत, सबसे बड़ी अलामत सैयदुश्शुहदा की मजलूमियत की करार पाई। अब ख़ानदान इस्मत व तहारत ने जो असारत का ज़माना गुजारा उसमें लम्हा लम्हा मजलूमियत का था। जो रिवायत में और आप बचपन से सुनते हैं कि ऊँट चलते थे और बच्चे गिर जाते थे और कुचल जाते थे, क्या मजलूमियत रही वो जो हम और आप सुनते हैं कि बच्चे दुश्मनों के पास जाके पानी मांगते थे, वो पानी घिरा देते थे और बच्चे प्यासे रह जाते, मजलूमियत ही मजलूमियत। और बाकी कुछ मजलूमियतें ऐसी हैं जिनको बताते वक्त औलाद नबी का चाहने वाला बताने की जरूरत नहीं कर पाता, किस मुंह से कहे कि औलाद नबी बाजारों में बैठे रहे और वो लईन अपने दरबारों के अंदर इनको इजाजत नहीं देते थे, क्या है अल्लाह, नहीं मालूम कौन से मराहिल थे, नहीं मालूम कौन से वो अंदाज थे कि जब दरबार के अंदर तशरीफ लाए। हमारे पास एक बड़ी अजीब रिवायत है, ये रिवायत मामूलन बयान होती है और कुछ मसादर के अंदर भी इसका सनद मौजूद है कि एक मौका आया जब दरबार के अंदर सरे अकदस इमाम हुसैन और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा और वो यजीद सैयदुश्शुहदा की बच्ची से कहता है, क्या यही तेरे बाबा का सर है? क्या क्या तेरे बाबा भी तुझे पहचानते हैं? और वो बच्ची कहती है कि हाँ यही मेरे बाबा का सर और मेरे वालिद मुझे पहचानते हैं। हमारे पास रिवायत मौजूद है एक शब की तारीकी में, अजीजो ये जुमला हमारे पास रिवायत में मौजूद है कि सैयदुश्शुहदा का सर फेंका गया, फेंका गया।
1: बच्ची के सामने वो सर फेंका गया और उस बच्ची ने सर को गोद में लेकर मरसिया पढ़ना शुरू किया।

किया, किसने तेरे गले पे छुरी चलाई? सैयद शुहदा की मजलूमियत की अलामत ये यतीमा का बैन है, ये यतीमा का नोहा है। बस एक मौका आया कि बच्ची नोहा और मरसिया पढ़ते पढ़ते खामोश हो गई। मौला चौथे इमाम तशरीफ लाए और फरमाया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मौला चौथे इमाम ने पहले भी ये जुमला पढ़ा था। वो जुमला कब था? जब इमाम खेमे से तशरीफ लाए थे, सारे अकदस को नेजे पर देखा था और फरमाया था इन्ना लिल्लाह अला लअनतुल्लाह अलल-कौमिज़्ज़ालिमीन, अला लअनतुल्लाह अलल-कौमिज़्ज़ालिमीन। परवरदिगार तुझे वास्ता नबी औलाद नबी का, सैयदुल शुहदा के यतीमों की मजलूमियत का वास्ता इस कलील को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए पाक परवरदिगार मरते दमों तक कुरान और अहले बैत के ताबेदारों में करार फरमा। क़यामत तक हमारी तमाम नस्लों को उनके जानसारों वफादारों में करार फरमा। खुदाया उनके वारिस के ज़हूर का दिन देखना नसीब फरमा, उनकी नुसरत और इस राह में शहादत नसीब फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए वक्त के इमाम के ज़हूर की तआजील के लिए दुरूद भेजें।

मुझे हर दम ये लगता है सितमगर आने वाला है, हर एक लम्हा मेरे दिल में ये दहशत बैठी है बाबा।

0: क्या हुआ? इन पर किसी बात का असर नहीं हो रहा है। ये लोग कहीं नहीं जाने वाले। खत्म कर दो ये सब। ये कोई आराम की जगह है?
1: जनाब मेरी क्या गलती है, सब यहीं रुकने के लिए कह रहे हैं।
0: जितना जल्दी हो सके सब लोग निकलो यहाँ से।
1: दुल्हन लेकर जा रहे हैं, कोई बाजार थोड़ा ही लगाया है।
2: आवाज तक नहीं निकली। अपनी बीवी का नहीं तो चाचा की बेटी का तो ख्याल कर सकते थे।
3: कोई रास्ता नहीं है, सब जाने का इंतजार कर रहे हैं।
0: ये रुकने के लिए महफूज जगह नहीं है, यहाँ रात बसर करना जरा भी मुनासिब नहीं है।
3: हाँ बस जा ही रहे हैं।
2: अगर मुझे तुम्हारी

0: का ख्याल ना होता तो अभी जीवक सबको लेकर कूफे की तरफ चली जाती, फिर देखती कि तुम क्या करते।
1: अब छोड़ो ना ये सब, चलते हैं।
0: या वापस चले जाते हैं या फिर यहाँ रुक के अपने बाबा के कारवां का इंतजार करते हैं।
2: नाइला, गैरों के सामने ज्यादा मत बोलो।
0: तुमसे ज्यादा गैर और कोई नहीं है यहाँ पर।
3: चलो सब लोग अपना सामान समेटो, निकलना है यहाँ से। चलो जल्दी,
4: सब लोग इस तरफ चलो।

0: ओहद जरा बताइए, मेरी बेटी के कपड़े पहने हैं मैंने, कैसी लग रही हूँ?
1: अल्लाहु खैरुल हाफिजीन वहुवा अरहमुर राहिमीन चश्मे बदूर। कौन कह सकता है कि तुम्हारी बेटी की शादी हो चुकी है, तुम तो खुद दुल्हन लगती हो। शामी औरतें भी ताज्जुब करेंगी कि आखिर दुल्हन कौन है।
0: अगर मुझे कारवा के साथ जाने की इजाजत दे देते तो क्या हो जाता?
1: सब्र करो, चलेंगे। तुम्हें अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत है, तुम उसे शौहर के घर छोड़कर कैसे आती?
0: पहले उसका ससुराल कितना करीब था और अब वो हमसे कितनी दूर चली गई है। कहाँ कुफा और कहाँ शाम। अच्छा, यजीद से ही निकाह पढ़वाना जरूरी था क्या हमारी बेटी का?
1: ये कोई मामूली बात है कि मेरी बेटी का निकाह अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया ने पढ़ा है?
0: अगर वाकई यजीद को अमीर मानते हैं तो कम से कम एक मर्तबा तो उसकी दावत कबूल करके खिलाफत के जश्न में शरीक हो जाते।
1: आजकल यजीद का नाम लेना मुसीबत है। तुम सियासत को मर्दों के लिए छोड़ दो और अपने काम से काम रखो।
0: जी बिल्कुल।
1: माजिद,

0: चरवाहे कहेंगे तुम्हारा दिमाग काम करता है कि नहीं है? जब सब वहां रुके थे तुम क्या कर रहे थे वहां?
1: हमारा रुकने का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ उसकी वजह से हमारा यह हाल हुआ है।
0: हद करते हो, इल्जाम लगाना कोई तुमसे सीखे, और ये तो तुम्हारे कबीले की आदत है ना, शर्म से डूब मरने के बजाय अकड़ के खड़े।
1: आखिर मैं क्यों शर्म से डूब कर मरने लगा? मैंने इन वहशियों से अपनी जान की बाजी लगाकर इनकी जान बचाई है।
2: सुनो, मैंने एक कारवा तुम्हारे हवाले किया था, पर तुम एक आदमी के साथ वापस आए हो।
1: वो सिर्फ एक नहीं, आपकी बेटी है।
2: मेरे भतीजे का क्या? उसकी लाश वापस लाने की हिम्मत किसी में नहीं थी क्या?
0: इन आलवियों को पैसा देके हमने सिर्फ पैसा बर्बाद किया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम तुम्हारे जैसे बुजदिल पर यकीन क्यों कर लेते हैं।
1: पहली बार आपके कारवां पे लुटेरों ने हमला नहीं किया, हम हर बार उनसे लड़े हैं, लेकिन उन लोगों को पैसा नहीं चाहिए था।
2: अगर पैसा नहीं चाहिए था तो उन्होंने हमला क्यों किया?
1: वो खून के प्यासे थे। कारवां में सब कुछ सही सलामत है सिवाय मर्दों के जिन्हें कत्ल कर दिया गया।
0: मैंने पहले ही दिन कहा था इन पे यकीन मत करो, आखिरकार देख लिया, अब क्या हो सकता है? हो सकता है कि ये सब तुमने खुद किया हो।
1: सही कह रहे हो, मैं चोर और कातिल हूं। मैं बेवकूफ हूं ना जो एक बेमालो दौलत कारमा पर हमला करूंगा और भागने की बजाय अकेला तुम्हारी बहन को बचाकर वापस लाऊंगा।
2: तो फिर तुम ही मुझे बताओ हिलाल, दिन दहाड़े मेरे कारवां को खाको खून में मिला दिया और तुम्हें पता भी नहीं कि ये किसने किया?
1: दुश्मनों की कमी नहीं है।
0: कुछ तो पता होगा।
1: जहां तक मुझे लगता है ये एक इंतकाम है।
0: बकवास कर रहा है,

0: तरह इसे भी बाजार तक पहुंचा देना, ठीक है?
1: बस इतना सा? पहली मरतबा तो 10 बोरियां थी और अब बस इतना सा सामान?
0: क्या करूं, खर्चे ज्यादा हैं और आमदनी बहुत कम, और ये भी बहुत मुश्किल से इकट्ठा हो पाया। पता है ना रास्ते में कितना खतरा है? इस मरतबा तो सुना है कि शाम के रास्ते में रागिब बिन औसत के कारवां को भी लूट लिया गया है, सुना है ना तुमने?
1: किसने कहा ये?
0: कारवां के कासिद ने बताया, उसने अपनी आंखों से देखा। छोटे बड़े सबकी गर्दनें काट कर सहरा में फेंक दी गईं।
1: सच कह रहे हो?
0: मैंने तो जो सुना था वो तुम्हें बता दिया, हकीकत तो मुझे भी पता नहीं।
1: जहां तक मुझे पता है उस कारवां में तो एक मुहाफिज भी था।

0: मैंने अपने कानों से सुना है, रातों रात मदीने से निकल गए हैं।
1: अजीब उम्मत है मियाँ, अब तो खुदा ही हिफाजत करे, चलता हूँ।
2: किसी ने खबर की जांच पड़ताल की है कि बस ऐसे ही दावत दे रहे हो?
3: जनाबे हबीब ने खबर दी है, इससे ज्यादा क्या जांच पड़ताल होगी। आज इब्ने माविया के मुकाबले में इमाम की बैत ना करना मेरी समझ में तो कोई माकूल तरीका एकार नहीं है।
4: खुद से अंदाज लगा के इमाम की सियासत को नहीं समझा जा सकता। हो सकता है वापस जाके वो बैत कर ले।
3: रात की तारीखी में उनके पूरे खानदान को मदीने से निकाल दिया गया है, इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि इमाम ने बैत नहीं की है।
5: उन्होंने इसलिए शहर छोड़ा ताकि खुदा के वली से जबरदस्ती बैत न ली जाए। जनाब
6: ऐसे में देखा जाए तो इनकी जान को भी खतरा है।
3: इमाम को कूफे की दावत देने का मेरा बस यही मकसद है। आखिर ये शियाने अली का शहर है, यहाँ हजारों घर इमाम के हैं और सब लोग इन पर कुर्बान हैं।
4: माफी चाहता हूँ।
3: खुदा की कसम, जब तक औलादे पैगंबर के कदम इस खाक पर नहीं पड़ेंगे तब तक हम लोगों की आकेबत बेहतर नहीं होगी, समझे? एक हो जाओ अल्लाह के नाम के लिए, बिस्मिल्लाह करो।
7: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
4: इस तरह आने के लिए माफी चाहता हूँ। मैंने सुना है, यानी लोग ऐसा कह रहे हैं कि मतलब सुनने में आया है कि रहने दे।
8: बताओ जो भी कहना है कहो।
3: रुको, बताओ क्या हुआ।

0: ऐसी खबर मिली है कि राघव की दुल्हन के कारवां को शाम के रास्ते में लूट लिया गया है। छोटे बड़े सब जितने थे सारे के सारे कत्ल हो गए।
1: तो उसी कारवां में था।
2: बेटे की बात तो एक तरफ है, हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि दामाद भी उससे ज्यादा उस्मानियों की खिदमत करने के लिए

0: दामाद तो एक तरफ है, हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि दामाद भी उससे ज्यादा उस्मानियों की खिदमत करने के लिए वो जिंदा नहीं रह पाया। हम सभी को जलील करके रख दिया उसने।
1: खुदा अरहमुर रहीमीन बख्श देगा।
2: आमीन।
3: जरूर बख्शे
2: इंशाअल्लाह। फातिहा मा सलावत।
4: अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली।
5: सामिया सुनो, फिक्र मत करो, उसके बाबा ने इस्लाम की बहुत खिदमत की है, वो बख्शवा देंगे।
0: फिलहाल तो इस खानदान पर एक अजीम मुसीबत आ पड़ी है, बाकी बातें बाद में होंगी।
6: सब बैठ जाएं।
7: इस वक्त इमाम के लिए दावतनामा लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अहद के घर से एक खबर आई है। बासित, जाओ तुम हिलाल का पता लगाओ।
8: जी अच्छा।
7: अच्छी खबर लाना। जो कत्ल होना था हो गया, अब आप हैं और आपका जमीर है। अली के लाल के खिलाफ अंबियों की जितनी चाहे बैत कर लें।
9: अगर कुछ देर तुम्हारी खबर ना मिलती तो खुदा की कसम मेरी तो जान ही निकल जाती।
10: मुझे नहीं पता था कि मेरे आने से पहले मेरी मौत की खबर पहुंच जाएगी।
9: कुछ पता चला किसका काम था?
10: अभी कुछ मत पूछो, बाद में बताऊंगा।

0: अरे खानम, देखो जरा कौन आया है।
1: मामू जान।
2: सलाम मामू की जान।
1: कहाँ थे आप? परेशान कर दिया था।
2: परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ।
1: आपको क्या हुआ? ये कौन है?
2: नहीं कुछ नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा लग गया था। सलाम माँ।
3: सलाम।
2: कुछ नहीं।
4: आहिया, तंदूर लगाया या नहीं?
3: खुदा हाफिज, सलामत रही।
4: आओ आओ, कहाँ थे तुम? कहाँ थे? अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द तो नहीं हो रहा ना मेरी जान? तुम ठीक हो ना? तुम मेरे भाई की निशानी हो, मेरे पास मेरे भाई की अमानत। तुम मेरे पास मेरे भाई की निशानी हो, मेरे पास मेरे भाई की अमानत हो, मुझे जान से ज्यादा अजीज।
0: अरे तुम्हारी अमानत तो यहाँ पर है, बिल्कुल सही सलामत है। लोग दुकान पे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, चलता हूँ।
3: खुदा हाफिज, सलामत रहे।
0: चलो बच्चे। खुदा हाफिज।
2: खुदा हाफिज।
3: अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो तुम जिम्मेदार होते हिलाल। हंसो मत अब, अल्लाह की कसम मेरी जान निकल गई थी। तुम तो शाम के सफर पर गए थे और यहाँ तुम्हारी मौत की खबर पहुँच गई थी। मैं तो डर गई थी। वो बिला वजह नाराज नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान थी वो। जब से कारवां की खबर आई है, इनकी निगाहें दरवाजे पर ही है।
2: इसका क्या मतलब है? मैं अकेला अलवी नहीं हूँ जो उस्मानियों के कारमा के साथ जाता हूँ।
3: तुम अब इन सारी बातों को भूल जाओ। खुदा का शुक्र है कि तुम सही सलामत वापस आ गए हो। तुम वहाँ तो मजे में थे, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही थी। हिलाल, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे?
2: बोलो।
3: बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए हो, सदका दे दूँ।

0: परेशान क्यों हो रही हो? इतना गहरा जख्म नहीं है। खुदा का शुक्र है मैं अपने घोड़े जितना परेशान नहीं हूं।
1: जिस्म का जख्म तो बंद हो गया है लेकिन मुंह बंद नहीं होता।
2: मुझे तो लगता है कि तुम्हारा जख्म बहुत गहरा है जिसका इलाज इस वक्त तो मेरे पास भी नहीं है।
3: क्या बात है, दिखता नहीं बच्चा सो रहा है?
2: थक गया है, अब इतनी जल्दी तो वो नहीं उठेगा।

0: एक जवान की तरह सारे काम करेगा। चलो
1: चलो आ जाओ।
2: और खूब और खूब देखने दो। और क्या है? ये भी नहीं, ये भी नहीं है। आखिर गई कहाँ वो?
0: जल्दी करो, जल्दी करो, जितना जल्दी हो सके इसे खरीद लो, खरीद लो इसे जल्दी से जल्दी।
2: कमाई कम थी लेकिन बरकत तो थी ना। अगर मेरे जानवरों के पास रहकर उनकी हिफाजत करते तो मेरा उतना नुकसान नहीं होता जितना अब हो रहा है। तुम्हें दिखाई नहीं देता?
1: मुआफी चाहता हूँ, गलती हो गई मुझसे।
0: यकीन मानिए, अगर सारी दुनिया भी घूम लेंगे तो ऐसी कनीज कहीं नहीं मिलेगी।
3: क्या बात है तवक्कुल के बेटे।
0: नहीं, तुम जरा भी फिक्र मत करो।
1: मुझे एक मोटी ताजी लजीज भेड़ चाहिए सबके लिए।
2: सबसे अच्छी वाली दिखाता हूँ तुझे।
4: जरा उसे घुमा के दिखाओ, पता भी तो चले कनीज कैसी है।
0: चल घूम के दिखा, चल घुट दिखा।
5: कबीसो, मैं तुम्हारी कनीज नहीं हूँ, समझ गए?
6: जनाब, गुलामों को पर्दा कौन करवाता है? जरा सर खोल के दिखाइए।
0: नहीं जनाब, आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी करते हैं। लीजिए देखिए। देखिए इसे, खोल के देखिए कितनी खूबसूरत है। अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देखिए इसे, बहुत खूबसूरत है ना। बताइए किसे चाहिए, बोलिए।
1: मैंने खरीद ली है, ये लो कीमत।
7: मुबारक हो जनाब, मुबारक हो। वाह क्या बात है, तुम्हें तो अच्छी शनाख्त है।
1: मुसलमान हो?
5: नहीं।
1: क्या कोई रिश्तेदार है? किस शहर से हो?
5: विदान से हूँ।
1: घबराओ नहीं, मैं महफूज भेज दूंगा, आ जाए।
2: फिलहाल ये ठीक है, बेहतरीन है तुम्हारी नजर में।
1: बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने गुलाम आजाद कर दिया है।
8: खुदा कबूल करे इब्ने हनीफ, खुदा तुम्हारे भाई और वालिद पर और तमाम शुदाए इस्लाम पर रहमत करे। ये सदका दिया था या गुनाहों का कफारा? क्या तुम समझते हो कि गुलामों को आजाद करवा देने से तुम्हारी मालो दौलत पाक साफ हो जाएगी? इस तरह के कामों का कोई फायदा नहीं है।
0: शेख, तुम तो उस्मानियों के साथ काम नहीं करते हो ना? तुमने तो इस हुकूमत को कुछ नहीं बेचा, बस अपना ही पेट भर लिया, और जब दूसरों की बात आई तो उनका माल हराम हो गया। सही कहा ना मैंने?
2: बिला वजह क्यों तुम इन दोनों लोगों के दरमियान पड़ रहे हो?
0: क्या करूं, मेरे दिल को बिला वजह और फजूल की बातें सुनने की आदत जो नहीं है।
4: फजूल की बातें तो तुम कर रहे हो, पहले अपने मुंह की निजासत को पाक करो, फिर मुझे वाजू नसीहत करना।
0: अच्छे आदमी के पास जा रही हो।
1: अच्छा तो अब तुम हमारे फैसले करोगे। मेरा माल हलाल है या हराम इसे मैं ही तय करूंगा, तुम नहीं।
8: तुम जरा होश में काम करो, इन लोगों के साथ रहकर तुम भी अंधे हो गए हो। बेहतर यही होगा कि इस बात को मत भूलो, रागिब के पूरे कारवां में से खुदा ने सिर्फ तुम पर रहम किया था। खुदा अली के शियाओं का हामी और नासिर है, याद रखना।
1: खुदा का

0: शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरी जान बचाई। और हाँ, आपको मेरी सलामती के लिए दुआएं करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलने से पहले पूरी बात जान लिया करो। आ जाओ,
1: चलो जाओ। बहुत बहुत मुबारक हो इब्ने हनीफ, बड़े अच्छे दिन गुजरेंगे। तो अब दूसरे की बारी। कोई है?
2: आप मुझे आजाद कर देंगे?
0: हाँ, ऐसा ही करो।
2: फिदान भेज देंगे मुझे?
0: जी हाँ।
3: इब्ने हनीफ, ये क्या हाल बनाया हुआ है अपना?
0: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम। कितनी मर्तबा तुम्हें समझाया है कि तुम अपना ख्याल रखा करो और लोगों से खुद को बचा के रखा करो। लोगों की नजरें अच्छी नहीं है। ये लो, देखो तो मैं क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए।
0: फिरोजा, खुद लाई है?
3: खुद तो जाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मेरी आंखें असल और नकल की पहचान कर लेती हैं। ये देखो, नैशापुर का फिरोजा है, बुरी नजर से बचाता है, सिर्फ 3 सिक्के का है।
0: ले लूंगा, लेकिन इस फिरोजे से मेरा कुछ नहीं होने वाला। दुआ करना मेरे लिए।
3: तुम जैसे जवान को मेरी दुआओं की क्या जरूरत? इब्ने हनीफ, ये दो है, एक से कोई फायदा नहीं होगा, दोनों ले जाओ।
0: दुआ करना।
3: खुदा हाफिज।
0: चलो यहीं रुको।
4: ए लोगों, हमारे प्यारों के जनाजे आ गए हैं, जनाजे आ गए हैं।
5: मेरे जवान, मेरी लाश, मेरे होश।

0: जाओ इसे यहाँ से।
1: जरा सी का एहतराम करो। तुम्हारे इस तरह रोने पीटने से मरने वाला वापस नहीं आ जाएगा।
0: ऐसे में और भला मैं क्या करूं? तुम ही बताओ, मैं अपने शौहर की मौत का गम मनाऊं या फिर खुशी मनाऊं? ये मर्द, ये बेगैरत इंसान, ये अमीन का चचा जाद हमारी पीठ में खंजर घूम रहा था और हम बेखबर थे।
2: बाहर जाओ, बाहर जाओ।
3: तुम किसकी बात कर रही हो मेरी बच्ची?
0: बहुत देर से समझ आई, कारवां चल पड़ा था और भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, वो तो मुझे दरबार में ले जाकर यजीद बिन माविया के हवाले करना चाहता था। मैंने उससे अपनी इज्जत की भीख मांगी, कितना गिड़गिड़ाई पर उसने मेरी एक ना सुनी।

0: गई हो मेरी बच्ची, होश खो बैठी हो अपना, ले जाओ इसे यहाँ से।
1: पागल तो मैं तब हो गई थी जब उस सहरा में नंगे पाँव अपने शौहर की बेगैरती का शिकार हो गई थी।
2: ये क्या कह रही है?
1: मुझे तो लगा था कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो बेशर्मी से कह रहा था कि तुम आज से अमीरुल मोमिनीन यजीद की बीवी हो। मैं तो वही उसी वक्त बर्बाद हो गई थी।
0: नामुमकिन है, ये नामुमकिन है बाबा। हमारा चचाजाद भाई ऐसी गलती हरगिज नहीं कर सकता।
2: हाय, कितने अच्छे इंसान थे, ये क्या हो गया तुम्हारे शौहर के साथ? खुदा तुम्हारी खैर करे नायला।
1: इस बेगैरत इंसान की तरफदारी करना बंद करो।
0: चिल्लाओ मत नायला, चिल्लाओ मत। तुम कैसे किसी मरे हुए इंसान पर तोहमत लगा सकती हो?
1: मेरा यकीन नहीं करेंगे। बाबा मेरी तरफ देखिए, यकीन नहीं है आपको मुझ पे?
0: मैंने उसे अपने बच्चों की तरह पाला था, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। नहीं, तुम उस पे इल्जाम लगा रही हो। बाकी बातें तशिए जनाजा के बाद।
1: तशिए जनाजा? कब से बेगैरतों और बेजमीर लोगों का तशिए जनाजा होने लगा? हाँ
0: या अल्लाह,
1: काश मैं वहीं मर जाती तो ये जिल्लत तो ना देखनी पड़ती। मेरा यकीन करें, अगर ये बेगैरत जिंदा होता तो इस वक्त में यजीद की कनीज होती और आप लोगों तक इस बात की खबर भी न पहुंचती।
0: तशिए जनाजे के बाद बात करेंगे।
1: काश इस अलवी सिपाही जितने ही बागैरत होते।
0: ज़बान संभाल के बात किया करो मुझसे।
3: मोहम्मद साहब, सब लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, अब ज्यादा देर करना मुनासिब नहीं होगा।
0: पूरे कूफे के सामने जलील हो गया, जल्दी करो, तशिए जनाजे का इंतजाम करो, तशिए जनाजे का इंतजाम करो।

0: से मिशकत करने के लिए शुक्रिया।
1: लेकिन मैं कल सुबह तक इसके जनाजे की नमाज पढ़ना चाहता हूँ। कफन और दफन कल होगा। अपनी आवाज धीमी रखें, उसकी बेवा आपके रोने की आवाज नहीं सुन पाएगी।
0: घर का दरवाजा बंद कर दो, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। घर के लोगों के अलावा कोई ना आ सके।
2: रोना धोना बंद करें, इस घर के लोग गमजदा हैं। अपने अपने घर जाओ।

0: मुझे इसके मरने का कोई गम नहीं है।
1: या अल्लाह,
2: खुश आमदीद इब्ने हनीफ। वैसे हम सब ने यहाँ पर आपकी बहादुरी की बहुत

0: थरे किस्से सुन रखे हैं।
1: मैंने भी आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन कल जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मैं चाह रही थी कि आपके सामने शुक्रिया अदा करूं उस एहसान का जो आपने मुझ पर किया है। बस मैं ही जानती हूं कि आज मुझे जो सुकून मिल रहा है उसके पीछे कितनी सख्तियां थी, कितनी मुसीबतें झेली हैं मैंने।
2: अजीम मुसीबत है, तसलियत अर्ज है। मैंने आपकी जान की हिफाजत के लिए सदका दे दिया।
0: खुदा आपको लंबी उम्र दे।
2: सलामत रहे। आप पर जो भी मुसीबत पड़ी है उसका असल जिम्मेदार मैं हूं। शर्मिंदा हूं। ये फिरोजा बलाओं से बचाता है, हमेशा अपने पास रखिएगा।

0: औहद साहब,
1: क्या हुआ?
0: ये क्या सुन रही हूँ मैं? कुछ पता करवाया है आपने? ये हमारे और बनी उमैया के दरमियान की बात है।
1: पता नहीं, मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कोई भी अफवाह लोगों तक पहुंचे। जितना हो सके खामोश रहो।
0: नहीं पहन रही है वो, बहुत कोशिश की है मैंने। तशिया जनाजा में तो आएगी नहीं, और मैं जानती हूँ कि वो सोग में भी ये नहीं पहनेगी।
2: बाबा से जरूरी बात करनी है।

0: Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. बात नहीं कर रहा है तो मैं जाता हूँ। 10 मरतबा फातिहा पढ़ लिया, अब भेजो।
1: मैं इस बेगैरत के बारे में अच्छी तरह जानता था। मैं जानता था कि ये यजीद के पास जा रहा है। नायला ने बिल्कुल सच कहा है।